हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
2: एफएम। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

सचे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है, नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाओ, गुरु के शब्द सलाह और गुरु के शब्द पढ़िया करो, गुरु की शब्द गल करिया करो, गुरु का नाम जपया करो, बस नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाइए, की समझाइए, गुरु का शब्द सलाह

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: Solo Sharda.
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के

मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहां है सारी मुश्किलें आसान है, इसीलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ साझा करने के लिए। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहां से ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब पढ़ने पढ़ाने की बात मैंने यहां जिक्र कर दी है तो आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी कि अगर आप अपने आप को लेकर आगे जाना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, विदेश की बात हो, तो किस किस दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है, इन दुश्वारियों से या यूं कहें कि इन चैलेंजेस से कैसे हम अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर एक सवाल का जवाब आपको बखूबी मिलेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं, सीईओ हैं, मिस्टर अमित बैजल जी, जो कि 2007 में इन्होंने इसकी स्थापना की और ये एक बुटीक माइग्रेशन लॉ एंड हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी है और जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस है, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप केन्या में, और मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आप पैर पसार रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में सर की अगर बात मैं आपके सामने रखूं तो सर ने जो एजुकेशन रही है वो डीपीएस आर के पुरम नई दिल्ली से रही है और आप आईएचएम में ग्रेजुएट है, यानी कि पूसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम आता है, और आईएचएम का जब जिक्र आता है तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई का जिक्र आता है। साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम माइग्रेशन लॉ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, कैनबरा एंड एन एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से आपने वहां से पढ़ाई की है, तो बहुत सारा अनुभव है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सर से ही खुद इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: मैं तो थक जाऊंगा सर, बहुत अच्छा आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी बातें आपके बारे में पढ़ रहा था, तो बस मैं तो यही कहूंगा कि मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके और बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जहन में पहले सवाल ये आता है कि आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, दिल्ली इज वेरी नाइस, ये हमारी होम सिटी है। 25 साल हुए दिल्ली छोड़े हुए लेकिन अभी भी घर ही लगता है।
0: घर ही लगता है, बहुत सही कहा आपने, घर ही लगता है, रियली नाइस। सबसे पहले जहन में सवाल ये भी आता है कि ये जो कंपनी है आपकी जिसके आप संस्थापक हैं, वीजा इन्फो
1: जी,
0: मैं जानना चाहता हूँ, मेरे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि वीजा इन्फो है क्या।
1: देखिए, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह गया था। मैं 1999 की बात बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं वहाँ पहली बार गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक तो मुझे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया है क्या। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि एजुकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ हिंदुस्तान का अनुभव था तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत आई मुझे ये समझने में कि ऑस्ट्रेलिया में टोटली सिस्टम जो है ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ना तो हमें, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे हमें किसी ने गाइड किया था कि वहाँ जाके क्या होगा, ना जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब्सटैंशियल या फैक्ट बेस्ड थी। सबने अपनी अपनी ओपिनियंस ज़रूर साझा किए थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो तो उन्होंने अपने तजुर्बे से हमें बताया था, हमारे दोस्तों ने अपना तजुर्बा शेयर किया था, लेकिन एक साइंटिफिक वे, एक सही समझदार तरीका, जो जैसे अब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं आप पढ़ने के लिए या स्कूल जाते हैं आप अपनी जिंदगी में आगे पढ़ने के लिए, तो स्कूल में आपकी 12 साल आप लगाते हैं, लेकिन जब हम बाहर गए अपनी पूरी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तो हमारे को किसी ने 6 महीने की भी ट्रेनिंग नहीं दी थी कि बाहर जाके करना क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज और रिसर्च की बहुत बड़ी कमी है स्टूडेंट्स के अंदर। जब वो बाहर जाते हैं तो वो यूजुअली लोगों से ओपिनियन लेते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, एजुकेशन एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं और अपना पूरा फ्यूचर का करियर उनके हाथ में रख के बोलते हैं आपको जो करना है कीजिए।
0: जी, जी।
1: तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको कि जब आप सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है तो आपको एक डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए बाहर के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और वो बहुत जरूरी है
0: जी। मैं समझता हूँ कि सर उसके बाद आपका रोल शुरू होता है, आपकी भूमिका शुरू होती है, जब आपने कहा कि एक स्टूडेंट्स को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है, तो जो आपकी भूमिका है, क्योंकि आप एक यूं कहें कि सर्टिफाइड एजेंट हैं, अच्छे काउंसलर हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में आप जाते हैं, तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपसे समझना चाहते हैं, और उस वक्त आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? या यूँ कहें कि इसके साथ साथ सवाल मेरा ये भी जुड़ा हुआ है कि ये जो जर्नी शुरू होती है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहता है, स्टूडेंट्स को जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो आपका जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या रहता है?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जर्नी ट्वेल्थ के बाद शुरू होती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज अगर आप अपने बच्चे को IIT में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो यूजुअली आप उसकी तैयारी 6ठी 7वीं से शुरू कर देते हैं
0: जी।
1: आप 12वीं की वेट नहीं करते हैं कि 12वीं खत्म होगी उसके बाद हमारा बेटा IIT की इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए शुरुआत करेगा। तो आपके लिए जो जो चीज जरूरी है जिंदगी में, आप उसकी तैयारी बहुत अरसे पहले से शुरू कर देते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो IIM में एडमिशन हो, चाहे कोई भी किस्म का एंट्रेंस टेस्ट हो। लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है तो यूजुअली देखा यह जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पहले आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, 12वीं खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस या वहां जाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर आती है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता रिसर्च करने का, समझने का, सोचने का, और आपको डिसीजन लेना होता है इंस्टेंटली। तो उसमें फिर वो अरेंज मैरिज वाला सीन हो जाता है कि आपको लड़की दिखाई गई है, आपको 15 सेकंड में हाँ या ना बोलना है और उसके बाद उसके साथ पूरी जिंदगी निभाना।
0: ऐसा अक्सर होता भी है कि मतलब कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फैसले हमारे बड़े बुजुर्ग ले लिया करते थे, तो जिंदगी भर जब एक दूसरे के साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो फैसले सही भी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो खैर, आपकी बात का भावार्थ मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे लिसनर्स भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा अक्सर हिंदुस्तान में भी होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं होता। दोनों बात सर ने यहाँ रखी है कि अगर आप वो एक प्लेटफॉर्म, अगर वो आप एक बेस बना के शुरू से ही चलेंगे तो 12th के बाद आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा सामने नहीं आएगी। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, और जो अमित सर आपसे अपनी एक जर्नी शेयर कर रहे हैं, इस बात को निश्चित तौर पर जब आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे ही जानना चाहेंगे। म्यूजिक से आपका वास्ता तो रहता ही होगा सर, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप सुनना चाहते हो, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो?
1: मुझे मोहम्मद रफी के सारे गीत बड़े अच्छे लगते हैं, तो मोहम्मद रफी का कोई भी गाना बहुत ही अच्छा होता है, और सुबह का टाइम है।
0: ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ अमित सर के लिए, तो ये गाना आपके लिए भी है लिसनर्स। इस गाने को आप जरूर सुनिए, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन, और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है अमित बैजल साहब, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक हैं, और बहुत सारी बातें हो रही हैं वीजा इन्फो के बारे में, करियर के बारे में। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, आप हैं अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले आपने सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, जो मुझे भी समझ में आई कि 12th के बाद हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लानिंग अगर पहले से होगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा दिक्कत परेशानी लोगों के सामने नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि लोग आपकी जो ड्यूटी शुरू होती है, आपसे जब मिलते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एजेंट, अच्छा काउंसलर अगर मिल जाए तो उनकी मेहनत वसूल हो जाती है, अदरवाइज इस पेशे से भी विश्वास उठ जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कबूतरबाजी, जिसे एक आम भाषा में कहा जाता है कि लोग पैसे ऐंठ लेते हैं, वहां हम आपको भेजेंगे, वहां धरातल पर चीजें अलग कुछ होती हैं, तो ये प्रोसेस मैं समझना चाहता हूँ।
1: देखिए, सबसे पहले आपको इसकी तैयारी तरीके से करनी पड़ेगी, और सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, आपका गोल क्या है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य और डिजायर कि मुझे क्या ख्वाहिशें हैं, वो दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है बहुत आपके पास पैसा हो, ये एक ख्वाहिश है, ये गोल नहीं है। गोल आपका होना चाहिए बड़ा क्लियर, संक्षिप्त, कि आप करना क्या चाहते हैं आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद
0: जी।
1: अब लोग कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि आज 5 साल के बाद क्या होगा या क्या करना चाहते हैं। भले ही लोगों को ये ना पता हो कि हमें 5 साल के बाद क्या करना है, लेकिन उनको एक चीज हमेशा हर एक आदमी को पता होती है कि हमारे को 4 से 5 साल के बाद जिंदगी जीने के लिए जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सवाल किसी से पूछे, भले ही वो इससे नजर चुराए, आंसर ना करना चाहे, लेकिन एक ना एक दिन जिंदगी में सबको आंसर करना पड़ता है कि उनको एक्चुअली में जिंदगी जीने के लिए जैसा वो लाइफस्टाइल चाहते हैं उसके लिए कितनी आमदनी की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको अपनी जिंदगी जैसा आप जीना चाहते हैं, उस जिंदगी जीने के लिए अगर आपकी ख्वाहिश और रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए महीने की सैलरी की है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी का मेरा उद्देश्य है आज से 3 या 4 साल बाद, और आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहते हैं,
0: और
1: जो कर रहे हैं क्या वो आपको उस उद्देश्य के पास लेके जा रहा है या उससे दूर लेके जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से आदमी सोचना शुरू करे तो उसको आउटकम्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेंगे। लोग अक्सर ये वाली बात करते हैं कि हमने ऐसा सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं,
0: नहीं
1: हुआ। ये 99% लोग अपनी जब नाकामी होती है तो
0: छुपाने की कोशिश करते हैं,
1: छुपाने की भी कोशिश नहीं करते, मैं ये नहीं कहूंगा कि छुपाने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको प्रिपेयर नहीं थे। अब प्रिपेयर नहीं थे तो अब नाकामी का कोई कारण तो होता है
0: जी, जी।
1: तो हर आदमी, हर इंसान एक कारण ढूंढता है। तो अगर तो आपने ये देख लिया कि आपको कितनी आमदनी चाहिए, तो उसके बाद आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस आमदनी को हासिल करने के लिए क्या एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं। अगर एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं तो एजुकेशन को एक्सपेंस मत समझिए, एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपना घर खरीदते हैं, आपके माँ बाप ने घर खरीदा होगा तो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी लोगों से बात करी होगी ये देखने के लिए कि उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, क्या दाम बढ़ेंगे आगे जाके। तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो घर खरीदने की हो, चाहे वो सोने जवाहरात की हो, हर इन्वेस्टमेंट पे इंसान रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है। तो एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है
0: जी।
1: और एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपकी लाइफस्टाइल को फंड कर सकती है या नहीं, इसका जवाब आपको देना है सबसे पहले, और उसके हिसाब से आपको अपना गोल सेट करना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने गोल सेट कर लिया कि हमारे को ये आमदनी चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है कि आपके गोल के मुताबिक ये आमदनी आपको हिंदुस्तान में हासिल हो सकती है? हो सकता है आपको ये आमदनी हिंदुस्तान में नहीं, बाहर हासिल हो सकती है। तो फिर आपको ये भी देखना है कि बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कितने सालों के लिए जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आप बाहर जाएं तो हमेशा के लिए चले जाएं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या परमानेंटली भी बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। तो अब आपको ये जवाब देना है कि आपका गोल क्या है, आपने बाहर थोड़े टाइम के लिए जाना है या परमानेंटली जाना
0: है? बसने जाना है।
1: बसने जाना है
0: जी।
1: तो अगर तो आपने बसने जाना है तो फिर हम उस तरीके से आपके सवालों के जवाब और आपको आपसे ही हम बात करके आपसे समझेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमारे को गोल और उद्देश्य क्लियर है उसके बाद हमारे को किसी चीज की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे को हर चीज का नापतोल करने का एक चीज मिल जाती है कि अगर ये चीज आपको डिसीजन उद्देश्य के पास लेके जा रहा है तो ठीक है, दूर लेके जा रहा है तो उसके बारे में सोचो नहीं।
0: जी जी,
1: तो सब कुछ आसान हो जाता है उद्देश्य साफ हो तो।
0: क्या बात है, बहुत खूब। इस बात का मर्म यही है कि उद्देश्य साफ होना बहुत जरूरी है, पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो प्लानिंग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्लानिंग एक इंसान को आगे लेकर जरूर जाएगी। यहाँ पर चैलेंजेस की हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये तो रही बात एक नॉलेज की, जानकारी की, कि ये जानकारी अगर आपको है, आपका जो एक उद्देश्य है वो सब कुछ अगर क्लियर है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं, कहीं आप जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान, खास शख्सियत है अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही हैं, जिंदगी को जीने की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ म्यूजिक की भी बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्टार्टिंग में रफी साहब का गाना आपके लिए प्ले किया और अभी ऑफ एयर मेरी बात हो रही थी सर से, तो वो कह रहे थे कि लता जी मेरे दिल के आसपास रहती हैं, उनके गानों को सुनकर सुकून मिलता है। तो यानी कि इस ब्रेक पर लता जी का गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीजा इन्फो के संस्थापक अमित बैजल जी और बहुत अच्छी जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं लिसनर्स। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने नॉलेज की बात की, गोल की बात की, तैयारियों की बात की। जानकारी का अभाव कम होता है जिसकी वजह से लोग राह भटक जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने हमारे सामने रखी। लेकिन अब उसके बाद जब हम एक स्टेप को आगे बढ़ रहे होते हैं, कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ये भी सच है कि चुनौतियां फिर वहां से शुरू होती हैं। चाहे वो रुपयों की बात हो, चाहे वो ठगने वाली बात हो, चाहे वो दूसरे विदेश में रहन सहन की बात आती है, अपना सपन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 पॉइंट्स मैं आपको गिना पा रहा हूँ
1: जी।
0: आपकी नजर से वो चैलेंजेस क्या हैं?
1: देखिए, आपने बड़ी सही बात कही कि गाइडेंस किस आदमी से या किस शख्सियत से ली जा रही है वो बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको बाहर भेजेंगे, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे या काम करने के लिए भेजेंगे, और लोग अक्सर उस झांसे में पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत कम पैसा मांग रहे होते हैं या थोड़ा बहुत पैसा मांग रहे होते हैं, और लोग वो जाके अपना काम शुरू करा देते हैं। लेकिन वो ये तहकीकात नहीं करते कि कितने लोग कामयाबी की सीढ़ी पे वो एक्चुअली में गए हैं। एक दूसरी चीज, अगर आप किसी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये बाहर की सारी कंट्रीज अपने जो लॉयर्स होते हैं उनको एक लाइसेंस देता है। अगर आप किसी भी लाइसेंस्ड एजेंट, नॉट लाइसेंस्ड एजेंट इन इंडिया बट लाइसेंस्ड एजेंट इन द कंट्री जहां आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप कभी भी उन एजेंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपको दो तरीके फायदे होते हैं।
0: एक, जैसे कि आप हैं,
1: जैसे कि हम हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हम जिम्मेवार हैं। अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी होती है, हमारा लाइसेंस खतरे में आता है। तो जब किसी का लाइसेंस खतरे में आता है, तो वो मेक श्योर करता है कि हमारी रोजी रोटी के ऊपर कोई आंच ना आए। अब हिंदुस्तान में देखा अक्सर ये जाता है कि किसी को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप क्या करेंगे, शायद मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, कंप्लेंट्स करी, सब कुछ किया, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं,
0: सामने वाले को जेल नहीं हुई।
1: देखिए, जेल तो बहुत कम की बात है। एक आदमी की जिसकी करियर खत्म हो गया है, अगर किसी को जेल हो भी जाती है 2 साल की 4 साल की, उससे उस जिसका जितने लोगों का करियर तबाह हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो अपने आपकी सुरक्षा स्वयं करें।
0: क्या बात है, सही।
1: तो
0: सही,
1: आपको अगर अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो उसके लिए दो चीजें ध्यान रखिए। एक, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू ही काम कराएं, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है आपकी तरफ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी किसी की मुंह जवानी बात ना माने, जो चाहे वो हमारी कंपनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जो भी वो आपको बोल रहे हैं, आपका हक है उनसे वो लिख के लेने का।
0: क्या?
1: तो अगर तो वो लिख के देने के लिए तैयार है, आप उनसे आगे बात कीजिए। अगर जो आदमी अपनी बात को लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसकी बात पे जब उसको खुद को भरोसा नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं।
0: सही बात है, सही कहा आपने। सो लिसनर्स, इस बात का आशय यही निकल कर आ रहा है कि इन दो बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें, या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए कि जो एजेंट हैं, जो काउंसलर हैं, क्या उनके पास वो हथियार है, यूं कहें कि जिसके बदौलत वो काम कर पा रहे हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप उनसे मिलें, बात करें। दूसरी बात, सर ने जो बात आपको बताई कि फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी नहीं, और निश्चित तौर पर आपको उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो इन बेसिक बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, और गलत दिशा में आप न जाएं। अदरवाइज होता क्या है कि आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, आप रुपयों से रुपया आपका चला गया होता है और फिर इस तरीके के जो एजेंट्स हैं उनसे भी आपका विश्वास उठता चला जाता है। अक्सर सर हमने एक वर्ड सुना है हिंदुस्तान में कबूतरबाजी, यानी कि ये चीज वही बातें हैं जो हम बात आप कर रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है, विदेश उनको भेजा जाएगा एजुकेशन के लिए। जो मैं बात कर रहा था कि धरातल पर कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, भिन्न होती हैं, तो आपकी बात का एक संदेश मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं ने समझ ही लिया होगा इसका जो मर्म है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे एक जहन में सवाल ये आ रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए आगे जाते हैं और कुछ लोग वहीं बस भी जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बस जाते हैं।
0: तो क्या आप फर्क महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है, विदेशों की जो शिक्षा पद्धति है, क्या एक अंतर आप महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि, मैं समझ रहा हूँ कि आपने बताया कि मुझे 2 लाख रुपए महीना चाहिए, हिंदुस्तान में शायद उनको नहीं मिल पा रहा, यही एक वजह रहती होगी कि पैसा बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से इस बात को आप समझाना चाहेंगे मैं श्रोताओं को?
1: देखिए, मैं आपको पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो नोट किया है कि वो ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो बाहर मेहनत का आपको जेन्युइन फल मिलता है।
0: जी,
1: हिंदुस्तान में सभी मेहनती है और सभी मेहनत करते हैं, लेकिन एक मेहनत होती है एफिशिएंट मेहनत और एक होती है इनएफिशिएंट मेहनत। तो अब मुझे इतनी हिंदी नहीं आती कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का आपको मतलब समझा सकूं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर तो आपकी मेहनत आप एक साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं और बाहर की कंट्री में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। वहां पर आप की इज्जत काम की है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लम्बर एक डॉक्टर से ज्यादा कमाता है। तो अब आप सपने में भी नहीं सोच सकते ये वाली बात कि एक इंडिया में एक प्लम्बर एक सर्जन से ज्यादा कमा ले, लेकिन ये फैक्ट है। एक इलेक्ट्रिशियन की अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगी, डॉक्टर की पहले मिलेगी। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं बाहर के, लेकिन ये वाले फैक्ट्स ऑफ लाइफ इंडिया में अभी आपने कभी देखे ही नहीं, आपकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको कभी दिक्कत आ सकती है।
0: आपकी बात
1: तो ये फैक्ट बात है। देखिए बाहर क्या होता है कि बाहर काम की कदर है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। सुबह जो कूड़ा लेने के लिए आते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब उनकी होती है। और 4 घंटे से 5 घंटे का काम होता है,
0: जबकि हिंदुस्तान में ऐसे कर्मचारियों को हीन भावना से देखा जाता
1: है। बिल्कुल, देखिए वही मैं बात बता रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे कल्चर में जहाँ सब सामान्य, देखिए वासुदेव कुटुम्बकम हमारे देश की एक संस्कृति है, लेकिन उसका एक्चुअली में पालन मैं बाहर जाके देखता हूँ।
0: क्या बात है, वाकई ये तो बात आप बहुत अच्छी बता रहे हैं हमें कि इस तरीके से जमीन आसमान का फर्क आप वहाँ महसूस करते हैं। सिर्फ यहाँ जो बातें हैं शायद वो कहने के लिए रह गई हैं। धरातल वाली बात मैं जब लेकर आता हूँ तो शायद इसलिए लेकर आता हूँ कि प्रैक्टिकली हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि राजनीति हर जगह है, बहुत बुरी है। अगर इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसको कहते हैं ना कि लैग पुलिंग की जाती है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता। आपने जो बात रखी कि एक इलेक्ट्रीशियन को तनख्वाह बहुत ज्यादा मिलती है, एक सफाई कर्मचारी का वहाँ सम्मान होता है, मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में भी समय बदल रहा है।
1: जी,
0: शायद हो सकता है कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया, वर्तमान सरकार कुछ कर रही है और आने वाले समय में पिक्चर चेंज होगी। हिंदुस्तान में 5 से 7 साल पहले सर हमने नहीं सुना था, हम जरूर सुनते थे किताबों के माध्यम से कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है।
1: जी,
0: आज एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है,
1: स्वच्छता
0: अभियान, स्वच्छ भारत, तो लोगों की सोच बदल रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये सोच बदलना वाकई बहुत जरूरी है।
1: देखिए जब लोग बाहर जाएंगे, जब बाहर जाके, अब पहले दुनिया में बहुत कम लोग बाहर जाते थे।
0: जी,
1: अब आज इंटरनेशनल एयरलाइंस इतनी सस्ती हो गई हैं कि बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। और जब कोई भी इंसान बाहर जाता है और वो बाहर की रहन सहन को देखता है तो वो ये सोचता है कि ये जो बाहर हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं,
0: क्या नहीं,
1: ये सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जब बाहर जाते हैं तो चाहे वो हम इंडियंस हों चाहे किसी और कंट्री के लोग हों, सारे एक ही रूल फॉलो करते हैं और सारे बड़े तमीज से वो रूल फॉलो करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ है बाहर, हिंदुस्तान में भी रूल ऑफ लॉ है लेकिन दिखाई नहीं देता अक्सर कि जिसका जिसका जो मन कर रहा है वो
0: जी,
1: कर रहा है।
0: जी, जी, आपने तो बिल्कुल बात ऐसी कह दी कि इस बात से एक और बात छेड़ने का मन कर रहा है कि अगर आप जनपद की तरफ जाते हैं तो रूल्स वहां आपको दिखाई देगा।
1: जी,
0: जैसे आप पिछड़े इलाकों की तरफ चले जाएं जहां मतलब कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि गाड़ी में किसी ने बेल्ट नहीं पहनी है या ओवरटेक गलत दिशा से कर रहा है या रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि हमें हर जगह अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। जहां आप अपनी समझदारी का परिचय देते हैं तो आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है और जिसकी वजह से उस इंसान से हर कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। यही एक वजह है कि अमित बैजल साहब से बात करकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है और यहां उनकी बातों के माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के माहौल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लता जी की आवाज में कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो या हम ही खुद प्ले कर दें,
1: आप खुद प्ले कर दें।
0: चलिए तो लता जी का खूबसूरत गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। जिंदगी में खुश रहने के लिए म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो इसलिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय का ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। जाहिर सी बात है कि शारदा विश्वविद्यालय में दूर दराज से शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपने आप को तराश रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि खुद से सवाल करिए, खुद का आकलन करिए। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो एक अच्छे काउंसलर से आप मिलिए, अच्छे एजेंट से आप मिलिए जिनके पास लाइसेंस है। अगर गलत व्यक्ति से मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पद्धति से, उस पेशे से हमारा विश्वास भी उठता चला जाएगा। इसलिए जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीजा इन्फो के संस्थापक ऑनर अमित बैजल साहब। तो बैजल साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ये बातें मैंने गांठ बांध ली और यही वजह है कि मैं अपने श्रोताओं तक रिपीट करके वो बातें पहुंचा रहा हूं कि हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, मुझे बात करके वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी सीखने समझने की ये बातें हैं। फाइनली एक संदेश जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे पेरेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में 20 साल का लगभग समय गुजारा है, तो फाइनली एक संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: देखिए, मैं यही संदेश दूंगा अपने श्रोताओं को, खासकर उन श्रोताओं को जो अब या तो 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हैं और बाहर जाने की तैयारी में लगे हैं, या उन श्रोताओं को जिन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म करी है और अब अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, कि आप सभी लोगों को सबसे पहले एक अच्छे काउंसलर और अच्छे लाइसेंस्ड एजेंट की ज़रूरत है। आप उनके साथ जो भी बात करें, राइटिंग में करें, ओरली कोई बात उर्दू जबानी की बात नहीं होती है। जो भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, जो भी आश्वासन आपको दिया जा रहा है, चाहे वो आपका एजेंट दे रहा है, चाहे वो कोई भी दे रहा है, वो हर एक आश्वासन को आपको पेपर पे लिखवा के लेना जरूरी है। अगर आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना एजेंट बदल दीजिए, क्योंकि जो सच बोलता है वो लिखने के लिए कभी मना नहीं करेगा, और जो आपको सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है वो क्लिक के कभी नहीं देगा। तो एक तो आप इस कसौटी पे हर एक एजेंट को तोलना शुरू कीजिए। दूसरा, आपको मैं ये कहूंगा कि अपनी तैयारी कीजिए, अपना लक्ष्य बांधिए। आपको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट तक का रास्ता क्या आप को पता है, और अगर पता है तो किसी कंसल्टेंट के पास, जैसे हम लोग होते हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपके साथ आपकी बात करेंगे, आपको समझेंगे, और उसके बाद आपको हम आपको आपका सलूशन भी आपके सामने रखेंगे, और हो सकता है कोई और सलूशन जो बेटर सूटेड हो वो भी आपके सामने रख सके। ये हमारा प्रोफेशन है। अब आप जब हमारे पास आएंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ समझने को मिलेगा, जो मैं आपको इतने छोटे प्रोग्राम में तो नहीं सिखा सकता।
0: मैं वही जानना चाह रहा था कि फाइनली मैं इसी बात पर आता कि कोई अगर आपके पास आना चाहता है, आपसे संपर्क साधना चाहता है, तो वो क्या माध्यम होगा?
1: देखिए, वीजा इन्फो आज की डेट में गूगल देवता हमें हर एक चीज का दर्शन करा देते हैं। तो आप वीजा इन्फो ऑस्ट्रेलिया टाइप करेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिलेगा, आप वीजा इन्फो टाइप करेंगे तो आपको हमारे ऑस्ट्रेलियन ऑफिस का एड्रेस भी मिलेगा, हमारा ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। मेरा नाम अमित है, amit@visainfo.com.au पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी सवाल है आप मुझे बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वरना आपके श्रोता आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हम तक उनकी
0: आवाज पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: रियली नाइस टॉक टू यू सर। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके भविष्य के लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ अमित बैजल साहब, जो कि संस्थापक हैं वीजा इन्फो के। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। हम तो बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुओं का सम्मान करते रहिए, क्योंकि ये सम्मान जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनसे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताना ना भूलेगा। बस मुझे दीजिए अनुमति, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की कोई जरूरत। सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in, शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है और यकीन मानिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अप

0: परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: बाबूजी जरा धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो यही कि सेहत सही तो लाभ गई, और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है, क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाएं। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, आज स्टूडियो आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन यकीन मानिए उसकी वजह भी बहुत खास है। अब ये वजह क्या खास है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन स्टूडियो में सेहतिया जी भी आ चुके हैं तो उनका स्वागत करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले सेहतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: भाई बहुत बहुत धन्यवाद शशि कपूर साहब, दिल की गहराइयों से मेरे श्रोताओं को प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे और मेरे श्रोता भी हेल्दी होंगे। यकीन मानिए सेहत सही लाभ कई के जरिए बहुत सारी बातें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे होते हैं। जो विषय आज का बहुत ही खास विषय है जिसके बारे में चर्चा होगी। अब मैं आता हूं उस बात पर जो बात आपने छोड़ी थी।
0: बिल्कुल,
1: बात ये कि आप मुझे वजह बताइए कि कहीं रास्ते में चाय समोसे पर तो रुक नहीं गए थे आप?
0: नहीं नहीं सेहतिया जी, चाय समोसे का ऐसा कोई खास शौक हमको नहीं है। आज तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते देर कर बैठा, गांव की चौपाल के पास पहुंचा तो देखा कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा कोई पंचायत होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो आप लोगों को कुछ समझा रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि वहां सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी बड़ी गंभीरता से आपकी बातें सुन रहे थे।
1: अच्छा,
0: तो क्या बातें चल रही थी चोरी छुपे, जरा सबको बताइए।
1: चलिए, तो आपने चोरी छुपे हमारी बातें सुन ली। अब वैसे देखा जाए किसी की चोरी छुपे बातें सुनना गलत है, गुनाह है ये।
0: हा? बिल्कुल, लेकिन सही बातें सुनना तो अच्छा है और आपकी बात भी ठीक है। और जो पहली बात मैंने सुनी उसने तो मुझे यही सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने कहा था कि अगर परिवार दो लोगों का है तो उसकी जिम्मेदारी भी दो लोगों की है। बस फिर क्या था, मैंने वहीं तय कर लिया कि आज का कार्यक्रम इसी विषय पर होगा।
1: भाई आप जो तय करते हैं उसको कर ही डालते, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि आज का दिन भी इसी चर्चा के लिए बहुत खास है। दोस्तों
0: बिल्कुल श्रोताओं, आज हम विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सेहतिया जी सच बताइए, जैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस का नाम आता है लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आज फिर जनसंख्या कम करने की बात होगी।
1: देखिए ये एक बात है और इसके साथ साथ दूसरी बातें ये भी जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में तो हम बाद में जाएंगे, चूंकि आप मेरे मन की बात जानना चाह रहे हैं, तो बात ये सामने भी आती है कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो मकान भी चाहिए, हरियाली पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत बातें ये हो सकती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या खास छुपा है वो हम जरूर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस बात से यूं कहें कि आपकी बात को आगे लेकर जाते हुए मैं कहना चाहूंगा, आपका सवाल था कि आज फिर जनसंख्या कम करने की बात होगी, तो इस पर मैं कहना चाहता हूं कि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों आज विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब केवल लोगों की संख्या गिनना नहीं है, इसका मतलब है हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन मिले, हर युवा को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिले और हर परिवार अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले सके।
0: यानी कि अब बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की भी है।
1: बिल्कुल, सोचिए अगर किसी परिवार में माँ स्वस्थ नहीं है, बच्चों को सही पोषण नहीं मिल रहा, युवाओं को पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा और लोग बिना जानकारी के फैसले ले रहे हैं, तो केवल जनसंख्या की संख्या देखकर क्या फायदा होगा? असली विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, शिक्षित हों और अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सकें।
0: और शायद यही वजह है कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का विषय युवाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर देता है।
1: भाई बिल्कुल सही, आज दुनिया ये कह रही है कि युवाओं को केवल भविष्य मत कहिए बल्कि उन्हें आज से ही अवसर दीजिए, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, सही जानकारी और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, यही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों
0: लेकिन सिहतिया जी, लोग तो कहते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी बात लोगों की क्षमता है।
1: बिल्कुल, आबादी अपने आप में समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब लोगों को अवसर नहीं मिलते। अगर युवा स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: यानी कि हमें लोगों की गिनती से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
1: देसी भाषा में कहा जाए, टीवी वाले अंदाज में, कि सही पकड़े। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी वर्षों से चल रहा है। भाई, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने वर्ष 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था।
0: लेकिन सियातिया भैया, लोग आज भी परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ दो बच्चे या जनसंख्या नियंत्रण समझते हैं।
1: देखिए साहब, जबकि इसका असली उद्देश्य कुछ और ही है। परिवार नियोजन का मतलब है कि पति पत्नी मिलकर ये तय करें कि उन्हें कब बच्चा चाहिए, कितने बच्चे चाहिए और दोनों बच्चों के बीच कितना अंतर रखना चाहिए। इससे माँ की सेहत बेहतर रहती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और पूरा परिवार बेहतर जीवन जी पाता है। भाई,
0: यानी परिवार नियोजन किसी मजबूरी का नाम नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला है।
1: बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात ये है कि ये फैसला दोनों मिलकर लें। आज भी कई जगहों पर लोग सोचते हैं कि गर्भधारण, प्रसव और परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार तो दोनों का है, इसलिए जिम्मेदारी भी दोनों की ही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सच कहूँ तो सिहतिया भैया, हमारे समाज में अक्सर पुरुष इन बातों से दूरी बना लेते हैं। अस्पताल जाना हो, गर्भावस्था की जांच हो, आयरन की गोली हो या परिवार नियोजन की बात, अक्सर कहा जाता है कि ये तो महिलाओं का मामला है।
1: और यही सोच बदलनी सबसे जरूरी है कपूर साहब। एक जिम्मेदार पति केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था की जांच के लिए भी जाता है और ये भी देखता है कि पत्नी समय पर पौष्टिक भोजन खा रही है या नहीं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ले रही हैं या नहीं, और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचने की तैयारी भी पहले से करता है।
0: बिल्कुल, यानी एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत पति पत्नी दोनों की साझेदारी से होती है।
1: बिल्कुल, और ये साझेदारी केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं है, बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण करवाना, माँ को आराम मिलने देना, स्तनपान में सहयोग करना, बच्चे की देखभाल करना और आगे परिवार नियोजन पर मिलकर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है।
0: लेकिन सिहतिया भैया, कई बार पुरुष कहते हैं कि परिवार नियोजन तो महिलाओं के लिए होता है, हमें इससे क्या लेना देना।
1: भाई, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। परिवार नियोजन महिलाओं का नहीं, पूरे परिवार का विषय है। दोस्तों, जब पति पत्नी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी माँ स्वस्थ रहती है, बच्चा स्वस्थ रहता है और परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत बनता है।
0: सिहतिया भैया, आपने आर्थिक मजबूती की बात कही, इसका परिवार नियोजन से क्या संबंध है?
1: भाई, बहुत गहरा संबंध है। सोचिए, अगर परिवार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की योजना बनाता है तो हर बच्चे की पढ़ाई, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है, परिवार की आय का सही उपयोग होता है और भविष्य की योजना बनाना भी आसान हो जाता है। दोस्तों,
0: यानी बात केवल बच्चों की संख्या की नहीं बल्कि उन्हें बेहतर अवसर देने की भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी है। हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि परिवार के फैसले जानकारी के आधार पर लिए जाएं, न कि अफवाहों या सामाजिक दबाव के आधार पर।
0: सिहतिया जी, आपने जानकारी की बात कही, लेकिन आज भी कई लोग परिवार नियोजन के साधनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं।
1: भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद यही वजह है कि हमें खुलकर इन विषयों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों,
0: तो फिर आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि परिवार नियोजन के कौन कौन से सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं, कौन सा साधन किसके लिए उपयुक्त हो सकता है, पुरुषों की भूमिका क्या है, युवाओं के लिए सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है, और आखिर स्वस्थ परिवार का रिश्ता स्वस्थ समाज से कैसे जुड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, और यही एक विषय है जिस पर हम बात करना भी चाहते हैं। जब जानकारी सही होती है तब फैसले भी सही होते हैं दोस्तों, और सही फैसले ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत देश की नींव बनाते हैं।
0: सियतिया जी, आपने अभी कहा कि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन आज भी गांव में कई लोग कहते हैं कि भगवान जितने बच्चे दे उतने अच्छे। ऐसे में परिवार नियोजन की बात करना क्या सही है?
1: देखिए साहब, बच्चे भगवान का आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति भी दी है। अगर परिवार अपनी परिस्थितियों, माँ की सेहत और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले तो ये भी उतनी ही समझदारी की बात है। परिवार नियोजन का मतलब बच्चों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर जीवन देना है।
0: यानी परिवार का आकार नहीं, परिवार का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी वजह से सरकार भी हमेशा कहती है कि परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या कम करना नहीं, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश का भविष्य भी मजबूत होगा।
0: लेकिन सियतिया भैया, आज भी कई महिलाएं कहती हैं कि वे अभी बच्चा नहीं चाहती, फिर भी कोई गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं कर पाती, ऐसा क्यों?
1: आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई भाई। कई बार जानकारी की कमी होती है, कई बार डर होता है, तो कई बार परिवार या समाज का दबाव। कुछ महिलाओं को साधनों की जानकारी नहीं होती, कुछ को लगता है कि इनसे नुकसान होगा, और कई बार पति की सहमति न होने के कारण भी वो कोई साधन नहीं अपना पाती। इसलिए केवल महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है।
0: यानी अगर पति पत्नी दोनों खुलकर बात करें तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं।
1: भाई ये तो जीवन का आधार है शशि कपूर साहब, और बहुत सही बात आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं। परिवार में बातचीत बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं तभी परिवार नियोजन सफल होता है दोस्तों।
0: सियतिया जी, आपने पहले बच्चों के बीच अंतर रखने की बात भी कही थी, आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि माँ का शरीर भी आराम चाहता है। अगर एक बच्चे के तुरंत बाद दूसरा बच्चा हो जाए तो माँ को पूरी तरह स्वस्थ होने का समय नहीं मिल पाता। इससे माँ में खून की कमी, कमजोरी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अगले बच्चे के कम वजन के साथ जन्म लेने या समय से पहले जन्म लेने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दो बच्चों के बीच लगभग 3 साल का अंतर रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर होता है।
0: यानी ये केवल परिवार की सुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी सवाल है।
1: बिल्कुल, और ये बात जितनी महिलाओं को समझनी चाहिए उतनी ही पुरुषों को भी।
0: लेकिन सिहतिया जी, जब परिवार नियोजन की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं?
1: और ये सवाल बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग होती है, और कोई कुछ समय बाद बच्चा चाहता है, कोई कई वर्षों तक नहीं चाहता, और किसी का परिवार पूरा हो चुका होता है, इसलिए सभी के लिए अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं।
0: तो शुरुआत उन दंपतियों से करते हैं जो कुछ समय बाद बच्चा चाहते हैं।
1: ऐसे दंपतियों के लिए कई सुरक्षित विकल्प हैं, जैसे कंडोम, जो गर्भ धारण रोकने के साथ साथ कई यौन संक्रमणों से भी सुरक्षा देता है। नियमित गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, सरकार माला एन जैसी गोलियां भी उपलब्ध कराती हैं, छाया नाम की एक गैर हार्मोनल गोली भी उपलब्ध है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है।
0: और जो इंजेक्शन वाला साधन है उसके बारे में भी लोग पूछते हैं।
1: बिल्कुल जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। ये एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इससे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की सलाह और समय के अनुसार ही लेना चाहिए।
0: और सेहत भैया, कई लोग कॉपर टी का नाम भी सुनते हैं, ये क्या होता है?
1: ये क्या होता है, यही सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा था कि ये क्या होता है। आपकी बात पूरी होती है इसी बात के साथ कि ये क्या होता है। भाई एक्सपर्ट कहते हैं कि कॉपर टी या IUCD भी एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है। इसे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी लगाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे रोज याद रखने की जरूरत नहीं होती। कई वर्षों तक ये गर्भ धारण से सुरक्षा देता है, और जब दंपति दोबारा बच्चा चाहते हैं तो इसे निकलवाया भी जा सकता है।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में कॉपर टी को लेकर बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि ये शरीर में इधर उधर घूम जाती है, कोई कहता है कि इससे हमेशा के लिए बच्चा नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप?
1: भाई मैं वही बात कहना चाह रहा था जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे। और यही अफवाहें लोगों को सही फैसले लेने से रोकती हैं। सच ये है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सही तरीके से लगाया गया IUCD सुरक्षित होता है। अगर किसी को कोई परेशानी महसूस हो तो वो स्वास्थ्य केंद्र जाकर सलाह ले सकता है। इसलिए अफवाहों पर नहीं, डॉक्टर, ANM या आशा की सलाह पर भरोसा करना चाहिए।
0: अच्छा सेहतिया भैया, एक बात बताओ, अगर किसी दंपति का परिवार पूरा हो चुका हो तो उनके लिए क्या विकल्प है?
1: तब स्थायी साधनों पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं के लिए नसबंदी की सुविधा है, पुरुषों के लिए नसबंदी का सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है, जिसे नो स्किल्पल वेसिकटोमी या NSV कहा जाता है।
0: लेकिन सेहतिया भैया, पुरुष नसबंदी को लेकर तो सबसे ज्यादा डरते हैं।
1: और ये डर ज्यादातर गलत धारणाओं पर आधारित है। कई लोग सोचते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाएगा या उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। नो स्केल्पल वेसिकटोमी एक सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे पुरुष की ताकत, मर्दानगी या रोजमर्रा के काम पर कोई असर नहीं पड़ता।
0: यानी पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल, परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं है। अगर पुरुष आगे आएंगे तो महिलाओं पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा और परिवार के निर्णय अधिक समानता के साथ लिए जा सकेंगे।
0: सेहतिया भैया, अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि बिना योजना के असुरक्षित संबंध बन जाए।
1: बात बिल्कुल सही कही है। ऐसी स्थिति में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग नियमित गर्भ निरोधक साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सही सलाह के लिए स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना सबसे अच्छा रहता है।
0: अच्छा सेहतिया जी, सरकार इन सभी सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कदम उठा रही है?
1: भाई सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की है। मिशन परिवार विकास के माध्यम से उन राज्यों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां प्रजनन दर अधिक रही है, लोगों को अधिक विकल्प मिले हैं। इसके लिए अंतरा और छाया जैसे नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। संस्थागत प्रसव के बाद परिवार नियोजन की सलाह देने की व्यवस्था मजबूत की गई है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जानकारी देती हैं, कंडोम और गोलियां उपलब्ध कराती हैं, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से भी जोड़ती हैं। दोस्तों
0: यानी अब केवल अस्पताल जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सेवाएं समुदाय तक पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर तय दिनों में परिवार नियोजन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि लोगों को सुविधा के लिए बार बार चक्कर न लगाने पड़े।
0: लेकिन सेहतिया जी, आपने शुरुआत में युवाओं की बात भी की थी, अगर सही जानकारी युवावस्था में ही मिल जाए तो शायद आगे चलकर बहुत सी समस्याएं रोकी जा सकती हैं।
1: आपने बिल्कुल सही बात कही, और यही हमें अगली

0: चर्चा में समझना है कि किशोर और युवा क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है और कैसे सही जानकारी उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सिहत्या जी, एक बात बताइए, अगर कोई दंपति परिवार नियोजन अपनाना चाहता है तो उनके पास विकल्प क्या क्या हैं? कई लोगों को लगता है कि बस नसबंदी एक रास्ता है।
0: भाई, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आरजे साहब। आज सरकार परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित और वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध करवा रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर दंपति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ साल तक बच्चा नहीं चाहता, कोई दो बच्चों के बाद परिवार पूरा मानता है, तो कोई केवल अंतर रखना चाहता है, इसलिए विकल्प भी अलग अलग हैं।
1: यानी एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता।
0: बिल्कुल नहीं। अगर पति पत्नी अभी बच्चा नहीं चाहते लेकिन भविष्य में चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिंग मेथड्स यानी जन्म के बीच अंतर रखने वाले साधन उपलब्ध हैं।
1: जैसे?
0: भाई, सबसे पहले कंडोम। ये बहुत आसान, सुरक्षित और बिना किसी दुष्प्रभाव वाला तरीका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है, बल्कि यौन संचारित संक्रमण यानी STI और HIV से भी सुरक्षा देता है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं और नवविवाहित दंपतियों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है।
1: और अगर कोई महिला रोज गोली खाना भूल जाए तो?
0: तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार माला N नाम की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराती है। इसके अलावा छाया नाम की गोली भी उपलब्ध है, जिसे हर दिन नहीं बल्कि निर्धारित अंतराल पर लिया जाता है।
1: और कई बार लोग कॉपर टी का भी नाम लेते हैं।
0: बिल्कुल, जिसे हम IUCD या कॉपर टी कहते हैं। सरकार की ओर से CUIUCD 380A और CUIUCD 375 उपलब्ध है। इसे प्रशिक्षित ANM या डॉक्टर लगाते हैं। एक बार लगने के बाद ये कई वर्षों तक सुरक्षित गर्भ निरोध देता है, और जब महिला चाहे इसे निकलवाकर फिर से गर्भ धारण कर सकती है।
1: और इंजेक्शन वाला तरीका भी है ना?
0: जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। इसमें हर 3 महीने पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन महिलाओं के लिए रोज गोली लेना सुरक्षित है, जिन महिलाओं के लिए रोज गोली लेना मुश्किल हो, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
1: और किसी कारणवश असुरक्षित संबंध बन जाए तब?
0: तब आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन इन्हें नियमित गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये केवल आपात स्थिति के लिए है।
1: और जिनका परिवार पूरा हो चुका है और वो अब बच्चा नहीं चाहते?
0: तब स्थायी उपाय भी उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए मिनी लैप और लेप्रोस्कोपिक नसबंदी, और पुरुषों के लिए नो स्केल्पल विस्टोमी, जिसे NSV कहा जाता है।
1: लेकिन हमारे यहाँ तो पुरुष नसबंदी से लोग बहुत डरते हैं।
0: भाई, डर जानकारी की कमी से पैदा होता है। सच्चाई ये है कि नो स्केल्पल विसिक्टोमी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, जल्दी रिकवरी होती है और इससे पुरुष की ताकत, काम करने की क्षमता या वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल शुक्राणुओं का रास्ता बंद करता है।
1: यानी जो बातें लोग सुनते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाता है, वो गलत है।
0: बिल्कुल गलत, ये केवल अफवाह है। इसलिए सरकार लगातार पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है।
1: सिहत्या जी, सरकार परिवार नियोजन के लिए और क्या क्या कर रही है?
0: सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। उनमें सबसे प्रमुख है मिशन परिवार विकास।
1: ये मिशन परिवार विकास क्या है?
0: भाई, जिन राज्यों और जिलों में प्रजनन दर ज्यादा है, वहाँ परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य है कि हर दंपत्ति तक उनकी पसंद के अनुसार सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन पहुँचे।
1: यानी केवल साधन उपलब्ध कराना ही नहीं?
0: बिल्कुल, इसके साथ साथ लोगों को सही जानकारी देना, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर तक सेवाएं पहुंचाना, प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन की सलाह देना, स्वास्थ्य संस्थानों में निश्चित दिनों पर परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये सभी इस अभियान का हिस्सा है।
1: और इसमें पुरुषों की भागीदारी?
0: वो भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
1: लेकिन बात केवल शादीशुदा लोगों की ही नहीं है, आज तो युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है।
0: बिल्कुल, भारत में लगभग 25 करोड़ से अधिक किशोर और किशोरियां हैं। यही देश का भविष्य है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
1: तो सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है?
0: इसके लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK चलाया जा रहा है।
1: इसमें क्या होता है?
0: भाई, इसमें किशोरों को केवल प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी ही नहीं दी जाती बल्कि पोषण, अनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव, हिंसा की रोकथाम, मासिक धर्म, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सही निर्णय लेने जैसी कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती हैं।
1: यानी ये केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की तैयारी है।
0: बिल्कुल, इसके लिए एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स यानी किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाए गए हैं, जहां लड़के और लड़कियां बिना झिझक सलाह और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
1: और स्कूलों में भी कुछ कार्यक्रम चलते हैं ना?
0: जी हाँ, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षा दी जाती है।
1: इसमें क्या खास बात है?
0: भाई, हर स्कूल में एक पुरुष और एक महिला शिक्षक को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है। वे बच्चों के साथ नियमित रूप से स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छता और किशोर स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, ताकि बच्चे शुरू से ही सही जानकारी के साथ बड़े हों।
1: सियता जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस का वैश्विक संदेश भी युवाओं को सशक्त बनाने का है।
0: बिल्कुल, इस वर्ष का संदेश यही कहता है कि यदि युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी मिलेगी, तभी समाज और देश का संतुलित विकास संभव होगा।
1: यानी लोगों को ये नहीं बताना है कि कितने बच्चे हों, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वे अपनी इच्छा से सही जानकारी के आधार पर सही समय पर निर्णय ले सके।
0: बिल्कुल, यही प्रजनन अधिकार है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कब शादी करे, कब माता पिता बने, कितने बच्चे हों और उनके बीच कितना अंतर हो, लेकिन ये निर्णय सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ होना चाहिए।
1: सियता जी, आज की बातचीत से मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई, विश्व जनसंख्या दिवस केवल आबादी गिनने का दिन नहीं है।
0: बिल्कुल, ये जिम्मेदारी समानता और अवसर की बात करता है, ये पुरुषों की भागीदारी की बात करता है,
1: ये किशोरों के भविष्य की बात करता है,
0: ये स्वस्थ परिवारों की बात करता है,
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताता है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत घर से होती है, जहां पति पत्नी मिलकर फैसले लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बच्चों को बेहतर भविष्य देने की तैयारी करते हैं।
0: बिल्कुल, जब पुरुष जिम्मेदारी निभाते हैं, महिलाएं सशक्त होती हैं, किशोर सही जानकारी पाते हैं और परिवार मिलकर निर्णय लेते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है।
1: तो श्रोताओं, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए एक संकल्प लें, हम परिवार नियोजन से जुड़े मिथकों पर नहीं सही जानकारी पर विश्वास करें। महिलाओं के साथ पुरुष भी बराबरी से स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे, किशोरों को सही जानकारी देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत की पहचान है।
0: यदि आपको परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों या किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों, तो अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से अवश्य संपर्क करें। सभी सेवाएं गोपनीयता और सम्मान के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं।
1: बिल्कुल, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। सीता सिंह जी, आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भाई धन्यवाद आरजे साहब, सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि जनसंख्या का सवाल केवल संख्या का नहीं बल्कि हर व्यक्ति के बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य का सवाल है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है. हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM. हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा. स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो. अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराए नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.
3: भाभी, लो मिठाई खाओ.
4: अरे, किस खुशी में?
3: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है.
4: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है. मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं. थकान मेल कहने लग गए सब उसे.
3: ओहो, भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
4: अनीमिया?
5: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है. इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद. ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है. याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास.
4: ललिता, लो मिठाई खाओ.
3: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई.
6: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम सबसे पहले बात करेंगे बागवानी की। जी हां, खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है और इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जो हमारे युवा साथी रोजगार की तलाश में हैं, वो बागवानी के क्षेत्र में बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें, जैसा आप तो जानते ही होंगे, बागवानी इसे एक बार लगा देने से कई सालों तक मुनाफा आप ले सकते हैं। बागवानी अपने अंदर तमाम संभावनाएं समेटे हुए है, जो किसानों के लिए भविष्य में सुनहरे आय का एक साधन बन सकती है। किसान मित्रों, फल सब्जी की मांग बाजार में साल भर रहती है। पारंपरिक फसलों में बढ़ते नुकसान और कम होते मुनाफे के मद्देनजर अब हमारे किसान मित्र बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी बढ़ सकते हैं अन्य किसानों की तरह। और किसान मित्रों, वर्तमान समय में देश के बहुत से ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो बागवानी करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। किसान मित्रों, आपको बता दें कि खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए बागवानी फसलों की सहायता से हमारे किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दें कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मिशन भी चला रही है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वैसे शहरों में सब्जी की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो रही है।

कृषि में सब्जी की खेती से न केवल शहरों में ताजी सब्जियों की आपूर्ति होती है बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। किसान मित्रों, अब आप जान ही गए होंगे कि बागवानी फसलों को उगाने से हम कितनी जल्दी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप जरूर बागवानी करें ताकि आपका कृषि में जो खर्चा आता है वो कम हो और आपको लाभ ज्यादा हो। किसान मित्रों, ये तो बात रही बागवानी फसलों की कि उनसे किस तरह से हम कम पैसा लगा करके अधिक लाभ ले सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। साथियों, जब भी हम देशभक्ति रागनी सुनते हैं या देशभक्ति गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना जागृत होती है कि हमें भी अपने महान क्रांतिकारियों की तरह, जो देश के लिए मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते देश के लिए दे गए, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए और हमें ये सोचना भी चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं उसे आप मन से कीजिएगा, निष्ठा से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तो ये भी देश की सच्ची सेवा होगी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है और इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई बैंक में जाके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनके फसलों का बीमा हो जाता है। और अब वो किसान मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नष्ट हो जाए तो उसका क्लेम आपको कैसे करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, तो ये बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं रविंद्र खालोर।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर से ये उपदेश, और इस उपदेश में रविंद्र खालोर कह रहे थे कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए, और जो लोग किसी को भी धोखा देते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है, और उनको अपने पाप कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। और किसान मित्रों, इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और हमने बताया था कि आप कैसे अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, कहां करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अपनी फसल का बीमा तो करवा लिया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो अब आपको उसका मुआवजा कैसे मिले। तो किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है, और साथ ही आपको जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण करते हैं और फिर नुकसान का आकलन करते हैं, और सब कुछ सही पाए जाने पर किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो किसान मित्रों, बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आप अपनी फसल का जरूर बीमा कराएं। किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं कोशिंदर खदाना।
1: बाकी सब पर।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है, तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
6: हिंसा को नो

नमस्कार। हिंसा ये शब्द सुनकर आप सबके दिमाग में थप्पड़, गालियाँ, मारपीट ही आता होगा, पर कई बार हिंसा अपना ऐसा बहुरूपिया रूप धारण करती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि इस घटना में भी हिंसा हो सकती है। जरूरी नहीं कि हिंसा शारीरिक ही हो, हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं। कई बार औरतें उस हिंसा को भी उसे अपने जीवन का हिस्सा समझ के नजरअंदाज कर देती हैं। ऐसे में ही हमारे समाज का एक पहलू है पितृसत्ता। पितृसत्ता क्या है, इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश करते हैं। हमारी इस कहानी का शीर्षक ही है पितृसत्ता। ये कहानी है रश्मि की, जो हमीरपुर गांव में रहती है। उसका पति राजू पास के अस्पताल में डॉक्टर है। रश्मि के परिवार में पति, बच्चे और उसकी सास रज्जो भी रहती है। रश्मि अपने घर वालों का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती है, सब उससे खुश रहते हैं। पर रश्मि को एक बेटी होने की वजह से ताने भी सुनने को मिलते हैं। रश्मि फिर से 4 महीने की गर्भवती है। एक दिन सुबह

0: रश्मि, ओ बेटा रश्मि, कहाँ हो भाई? सुबह से आज तुमको देखे ही नहीं है हम।
1: हाँ माँ जी, मैं रसोई घर में हूँ।
0: क्या कर रही हो तुम सुबह से ही रसोई घर में?
1: माँ जी बर्तन धुल रही हूँ।
0: बर्तन? तुम कहाँ है बर्तन धुल रही हो? मंजू आज आई नहीं है क्या?
1: नहीं माँ जी, बोल रही थी उसके बेटे की तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर के यहाँ जाना था।
0: अच्छा अच्छा, एक तो हर दूसरे दिन उसके किसी बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, कभी पति की तबीयत खराब हो जाती है, कभी उसी की तबीयत खराब हो जाती है। क्या करे आदमी, ये काम करने वाले भी ना, रोज ही इन लोगों का नाटक होता है।
1: कोई बात नहीं माँ जी, स्वास्थ्य को भी तो ध्यान में रखना है ना।
0: चलो ठीक है, उसका स्वास्थ्य देखो, अपना स्वास्थ्य मत देखना।
1: ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं है, आज मैं कर ले रही हूँ।
0: अच्छा चलो, अब राजू कहाँ है?
1: माँ जी के तो गए थे, काम पर जा रहा हूँ और अभी तक तो आए नहीं, शाम होने वाली है।
0: अच्छा, हमसे भी सुबह मिल के नहीं गया है। अच्छा, नाश्ता उश्ता करके गया है?
1: हाँ माँ जी, नाश्ता तो दिया था।
0: अच्छा, टिफिन दी थी कि नहीं उसको?
1: नहीं माँ जी, वो बहुत जल्दी में थे, निकल गए।
0: तो तुमको दे देना चाहिए ना, किस बात की पत्नी हो तुम उसकी? हाँ, एक हमारे बेटे को तुम टिफिन भी नहीं देती हो, क्या काम करती हो तुम दिन भर? जब देखो तब किचन में ही घुसी रहती हो, जब देखो तब रसोई घर में है, रसोई घर में है। हमारा एक ही लड़का है, वो भी बिना खाए बिना खाना लिए चला जा रहा है।
1: माँ जी उन्होंने ही मना किया था कि आज टिफिन नहीं लेकर जाएंगे।
0: मर्दों का तो काम ही होता है मना करना, तो तुम मान जाओगी?
1: ठीक है माँ जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी।
0: हाँ, इस बात का एकदम ख्याल रखा करो, नहीं तो अगली बार अगर सुने ना कि मेरा बेटा बिना खाए और बिना टिफिन लिए गया है, तब तुमको हम बताएंगे।
1: ठीक है माँ जी, आपकी बात का ख्याल रखेंगे हम।
0: तुम्हारे ससुर कहाँ है जी?
1: वो भी खाना ना खा कर निकले हैं माँ जी, कह रहे थे थोड़ा जा रहा हूँ पंचायत में बैठने।
0: उनका तो एक पंचायत ही नहीं खत्म होता है, घर का पंचायत अलग है, उनका गांव का पंचायत अलग है। अब क्या करें, हम अकेले ही पूरा घर को देखना पड़ता है।
1: अरे कोई बात नहीं माँ जी, समाज सेवा भी करना चाहिए।
0: तुम भी काहे नहीं चली जाती उनके साथ समाज सेवा करने? समाज सेवा करना चाहिए, जब देखो तब ज्ञान बांटते फिरती हैं ये। जाओ मेरे लिए भी खाना लेके आओ।
1: ठीक है माँ जी, ला रही हूँ।

0: लीजिए माजी, खाना खा लीजिए।
1: का बनाई हो ये, का सब है, घास फूस साग का है बनाई हो? हमको साग नहीं पसंद है, चौराई का साग बनाई हो तुम।
0: अरे माँ जी, हरी साग सब्जी खाना चाहिए।
1: अच्छा, तो हरी साग सब्जी हमको नहीं खाना चाहिए, हमको बच्चा नहीं पैदा करना है, तुमको करना है, तुम खाओ। खाना खाई हो?
0: हाँ माँ जी, खा लिया है खाना।
1: अच्छा, खा लिया, बहुत अच्छा, ऐसे ही खाना होना, खा लिया करो। एक बात बताओ, कितना महीना हो रहा है तुम्हारा गर्भावस्था को?
0: माँ जी,

0: हमको ना इस बार पोता चाहिए, चाहे तुम जैसे दो, चाहे तुम लिंग परीक्षण जो कह रही हो परीक्षण कराओ चाहे ना कराओ, हमको बस पोता चाहिए, समझ जाओ तुम।
1: नहीं माँ जी, लिंग परीक्षण मैं नहीं कराऊंगी।
0: तो क्या चाहती हो, पिछली बार तो पहले से एक बेटी जनी हो, इस बार भी एक बेटी जनना चाहती हो का? हमको नहीं चाहिए बेटी, हमको अब नतनी नहीं चाहिए, हमको पोता चाहिए, पोता।
1: लेकिन माँ जी, लड़की हो या लड़का, आज के जमाने में तो सब बराबर हैं।
0: कुछ बराबर बराबर नहीं है। देखो, हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाओ तुम, हम बहुत पाठ पढ़े हैं, हमसे ज्यादा नहीं जानती हो। जो बाल है हमारा वो धूप में सफेद नहीं हुआ है, दो अक्षर पढ़ क्या लेते हैं लोग, लगते हैं पढ़ाने।
1: नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं लिंग परीक्षण कभी नहीं कराऊंगी।
0: देखो, तुम जाओ ना जाओ उसका जिम्मा हमारा है, ठीक है? तुमको लिंग परीक्षण कराना है, देखो हम कैसे कराते हैं। ऐसे कैसे तुम नहीं कराओगी, तुम्हारे बाप हमको लाके नाती देंगे।
1: नहीं माँ जी, अब मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं, ये मेरा बच्चा है।
0: तुम्हारा बच्चा, हमारे बेटे का बच्चा नहीं है, तुम्हारा ये को बच्चा है, हमको चाहिए नाती, हम कुछ नहीं जानते हैं।
1: नहीं माँ जी, मैं ये पाप कभी नहीं करूँगी, आप मुझे मजबूर ना करें इस बात के लिए।
0: मजबूर, देखो तुम्हारा हम क्या करते हैं, हमसे तुम जुबान ज्यादा मत लड़ाओ, समझी?
2: अरे क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही है?
1: देखिए ना माँ जी क्या कह रही हैं, मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का या लड़की, इसकी जांच कराने को कह रही है मुझसे।
2: तो गलत क्या कह रही हैं माँ, ठीक ही तो कह रही हैं।
1: लेकिन ये तो कानूनी अपराध है।
2: ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, तुम्हारे इसी ज्ञान के चक्कर में हमें पहले से ही एक लड़की है, अब एक और नहीं।
1: लड़का है लड़की क्या फर्क पड़ता है?
2: क्यों फर्क नहीं पड़ता, मेरा वंश कौन चलाएगा, इसे आगे कौन बढ़ाएगा, और ये जो मेरी इतनी प्रॉपर्टी बनाई है मैंने, उसे कौन देखेगा?
1: लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है?
2: ज्यादा लेक्चर मत दो और चलो अभी तैयार हो जाओ, आज ही टेस्ट करा देता हूँ तुम्हारा।
1: लेकिन हम अपनी लड़कियों को ही इस काबिल बनाएंगे कि वो सब कुछ देख सकती हैं।
2: चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ।
1: मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये पाप कभी नहीं करूंगी।
2: और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ना कहने की?
3: अरे ये क्या हो रहा है?
2: अरे कुछ नहीं, बस ये रश्मि है, कह रही है जांच कराने नहीं जाएंगी।
3: कैसी जांच?
2: अरे पिछली बार टेस्ट नहीं कराया तो लड़की पैदा हो गई, इस बार भी मुझे लड़की नहीं चाहिए।
3: क्या बकवास बातें कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे होकर भी?
2: पढ़े लिखे होने से क्या बेटी को अपनी संपत्ति दे दें? अरे कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो तो क्या है, लड़का ही घर के जायदाद का वारिस होता है, लड़की नहीं।
3: किस दुनिया में जी रहे हो तुम, पहली बात तो गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराना एक अपराध है, और दूसरी बात कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती है।
2: अरे चाचा आप अपनी मॉडर्न सोच अपने पास रखो।
3: बेटा तुम लोग शराब पीना, इंग्लिश बोलना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में कभी पीछे नहीं हटते, तो फिर ये लड़का लड़की में भेद का जहर कब तक लेकर चलोगे?
2: चाचा वो सब अलग चीज है, पर यहाँ बात मेरे वंश की है, मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, अगर अब हमारे लड़का नहीं हुआ तो मेरे बाद इस घर का जमीन का क्या होगा?
3: अरे बेटा मेरा भी एक बेटे और एक बेटी है, बेटा लंदन रहता है, साल में कभी कभी ही आता है, पर मेरी बेटी यहीं पास के मोहल्ले में रहती है, और जब भी जरूरत पड़ती है मुझे वो हमेशा आके मिलती है और मेरा साथ देती है।
2: हाँ तो जो पास रहेगा वही तो साथ देगा, पर इसका मतलब ये थोड़े है कि आप अपना घर अपनी बेटी को दे देंगे, बेटियां तो पराया धन होती हैं।
3: क्यों नहीं देंगे, मैं अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी बेटी को दूंगा, और अब तो ये कानून भी बन गया है कि बेटियों का भी हक होता है बाप की जायदाद में, और बेटा बेटियां पराया धन नहीं, धरती पर सबसे प्यारा धन होती हैं।
2: ये तो आपने सही कहा, पराया धन नहीं होती। चाचा आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। अब मेरा बेटा हो या बेटी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
4: बेटियां पराया नहीं प्यारा धन होती हैं।
5: तो चलिए रज्जो और राजू, इन दोनों लोगों को तो समझ में आ गया कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, और लड़कियों का भी हक होता है उनकी पैतृक संपत्ति में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहां से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
0: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
1: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता असमान व्यवहार असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधू और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहाँ से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहाँ से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
3: हिंसा को नो।

नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हाँ मैं नारी हूं। हरिराम जी माधवपुर गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इसके साथ ही साथ वो दो गांव के मुखिया भी हैं। गांव में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, हरिराम जी बहुत ही सहजता के साथ उस समस्या का समाधान निकालते हैं। उनकी पत्नी रोहिणी एक गृहिणी है और वो घर के सारे काम करती है। परंतु रोहिणी पढ़ी लिखी नहीं है और उसको इस बात का बहुत मलाल है। रोहिणी सिर्फ घर के लोगों का ख्याल रखती है और घर के हर छोटे बड़े फैसले उनके पति हरिराम ही लिया करते हैं। रोहिणी और हरिराम जी के दो लड़के हैं, गोलू और अरुण, और एक लड़की जिसका नाम प्रीति है। हरिराम जी अपने दोनों लड़कों का दाखिला पास के एक कॉन्वेंट स्कूल में करा देते हैं, पर वो अपनी लड़की प्रीति का दाखिला किसी स्कूल में नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर प्रीति की मां उसको पढ़ाना चाहती है। और एक सुबह

0: सुनिए जी, गोलू और अरुण के स्कूल से फोन आया था।
1: अच्छा, वैसे फोन किसने उठाया था?
0: मैंने ही उठाया था, वो बहुत देर से फोन बज रहा था तो सोचा उठा लूं।
1: अच्छा जी, बहुत सोचती हो तुम।
0: गलती हो गई, अब से नहीं करूंगी।
1: गलती? हजार बार मना किया होगा कि फोन न उठाया करो, न उठाया करो, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
0: माफ कर दीजिएगा, अब से ऐसा कभी नहीं होगा।
1: कितनी बार माफ करूं? कई बार बोला है कि फोन मत उठाया करो, फोन पे पता नहीं कौन है, कहां से बात कर रहा है, कौन कौन से मर्द फोन करते हैं, औरतों को फोन से दूर रहना चाहिए, पर तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुम्हें तो मजा आती होगी ना मर्दों से बात करने में।
0: आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है।
1: अब हमको न सिखाओ कि क्या बोलना है और क्या नहीं। ये बताओ, क्या कह रहे थे स्कूल वाले?
0: वो कह रहे थे कि 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है, उससे पहले मुझे और आपको मास्टर साहब से एक बार मिलना होगा।
1: ठीक है, मैं चला जाऊंगा।
0: मुझे भी बुलाया है।
1: एक काम करो, तुम ही चली जाओ, हर एक काम में इनको कूदना है।
0: मैं तो बस।
1: देखो रोहिणी, साफ कह देता हूँ, तुम औरत हो और औरतों का काम होता है घर पे रहना, खाना बनाना, चौका चूल्हा देखना, समझी? वही देखा करो बस।
0: जी माफ करिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा।
1: अच्छा ही है अगर समझ जाओ तो।
0: अच्छा, एक बात कहनी थी आपसे, हम गोलू और अरुण का एडमिशन तो स्कूल में करा रहे हैं, अगर प्रीति का भी एडमिशन स्कूल में करा देते तो बढ़िया रहता।
1: नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
0: बच्ची को बहुत बुरा लगेगा, उसके दोनों भाई स्कूल जाएंगे और वो नहीं जाएगी तो।
1: अरे बच्ची का मन रखने के लिए मैं वो नहीं कर सकता जो हमारे खानदान में आज तक नहीं हुआ। हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं।
0: मैं बाहर जाने की बात नहीं कर रही, मैं स्कूल जाने की बात कर रही हूँ।
1: ज्यादा जुबान मत चलाओ, जाओ जाके पानी लेके आओ।
0: एक बार प्रीति से भी पूछ लेते हैं, अगर उसका मन नहीं होगा स्कूल जाने का तो उसका एडमिशन नहीं कराएंगे।
1: क्या कहा? प्रीति से पूछ लूं? अब मैं प्रीति से और तुमसे पूछ के फैसला लूंगा? हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी बात बोलने की?
0: जी माफ करिएगा, गलती हो गई।
1: चुप करो, दोबारा ऐसी बातें की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा।
2: अरे क्या हुआ हरिराम, क्या बात हो गई? भाई इतने गुस्से में क्यों हो?
1: अरे कुछ नहीं यार, ये तुम्हारी भाभी के बहुत पर निकल आए, अब घर के फैसलों में मुझे इनकी और इनकी बेटी की सुननी पड़ेगी।
2: अरे अगर भाभी कुछ अच्छा सुझाव दे रही हैं तो सुनने में क्या दिक्कत है?
1: हाँ क्यों नहीं, अब औरतों के फैसलों को मैं मानूं, अब यही रह गया है। और ये कुछ बहुत अच्छा सुझाव नहीं, अपनी बेटी को पढ़ाने का सुझाव दे रही है और मेरे बेटों से उसकी बराबरी कराने की बातें कर रही है।
2: अरे ये क्या बात हुई, बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती और वो बेटों की बराबरी क्यों नहीं कर सकती? हरिराम, तुम दो गांव के मुखिया होकर भी ऐसी बातें कर सकते हो? तुम्हारी सोच तो पूरे गांव की सोच है।
1: भाई तुम शहर वाले अपनी सोच अपने पास रखो, मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बेटी को और मेरे बेटों की बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं करानी।
2: अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी बहन रजनी की शादी का कार्ड देने आया हूँ। रजनी इसी गाँव की ब्लॉक में BDO है और यहाँ उसकी शादी अपने ही जिले के DPRO अधिकारी अभिषेक जी के साथ हो रही है। और पता है अभिषेक जी रजनी को UPSC की तैयारी कराने के लिए पास के कोचिंग क्लास में दाखिला दिलाएंगे और वो लोग एक पैसा भी दहेज नहीं ले रहे हैं।
1: क्या सच में वो लोग एक भी पैसा दहेज नहीं ले रहे हैं?
2: हाँ सच में, मेरी बहन खुद ही इस लायक है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है और वो इतनी सशक्त हमारे परिवार के सहयोग से ही हुई है। तो मैं ये तुमसे भी कहना चाहूंगा कि तुम भी अपनी बेटी प्रीति का पालन पोषण अपने बेटों की तरह ही करो और उसे भी आजादी दो खुल के जीने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। और ये सहयोग हम पुरुषों को ही करना पड़ेगा, तभी हमारे घर की, हमारे गांव की, हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी। समझे हरिराम?
1: हाँ यार अशोक, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी प्रीति को गोलू और अरुण की तरह पढ़ने भेजूंगा और उसे भी आजादी दूंगा अपनी बात रखने की और मनचाहा काम करने की। सुनो रोहिणी, हम प्रीति का भी एडमिशन कराएंगे।
0: अरे वाह, किस स्कूल में?
1: अरे उसी स्कूल में जिसमें गोलू और अरुण का एडमिशन हुआ है।
0: ये तो बहुत बढ़िया होगा कि तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाएंगे।
1: हाँ, हमारी भी टेंशन कम रहेगी तीनों एक साथ रहेंगे तो।
0: हाँ
1: अच्छा सुनो, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा।
0: अरे ये क्या कह रहे हैं आप?
1: हाँ माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, तुम्हें भी तो हमेशा ही डांटता रहता हूँ, कभी भी तुमसे ठीक से बात नहीं करता।
0: अरे कोई बात नहीं, पति हैं आप हमारे, हक है आपका हमें बोलने का।
3: नहीं रोहिणी, मुझे समझ में आ गया है कि औरतें भी समाज का आधा हिस्सा हैं और उनको भी हक है बराबरी का और इज्जत के साथ जीने का। तो अब से मैं कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, अब से तुम्हें भी पूरा हक है इस घर के फैसलों में भागीदारी का, समझी पगली?
2: ये हुई ना बात। इसी बात से आमिर खान की उस फिल्म का डायलॉग याद आ गया है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के।
3: चलिए, हरी राम जी को तो ये बात समझ में आ गई कि नारी को भी हक है समानता के साथ जीने और शिक्षित होने का। तो हम सब के घर के आस पड़ोस में जरूर कोई न कोई हरी राम जी जैसे व्यक्ति मिलेंगे, तो हम सब का ये कर्तव्य है कि अपनी सोच के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलने की कोशिश करें और महिलाओं को भी आत्मसम्मान से जीने का मौका दें। चलिए फिर, अब आप सब से इजाजत लेने का समय आ चुका है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए

0: हिंसा को नो।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहां से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
2: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
1: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
2: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बाजार है हप हप, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
4: और सभी श्रोताओं को अजीत का भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: जी आइए सुनते हैं आज का विचार जो हमें भेजा है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा जी ने, और वे लिखते हैं
4: ज्यादा खींच कर उलझाने से बेहतर है ढील देकर जाने देना, फिर चाहे वो पतंग हो या फिर रिश्ता।
3: जी आपका धन्यवाद इस विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
4: क्षीर सागर सोलापुर महाराष्ट्र से तुकाराम जी लिखते हैं,
3: आपका कार्यक्रम सुनता हूँ, ज्ञान बढ़ाने वाला है आपका कार्यक्रम, आप दोनों का आवाज मुझे बहुत ही पसंद है, उमंग कार्यक्रम से ढेर सारी जानकारी मिलती है, उमंग कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अगला संदेश मिला है हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये।
3: आप सबका बहुत बहुत आभार श्रोताओ। और अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी।
4: श्रोताओ इस कड़ी में आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में घटी एक विशेष घटना पर।
3: जी तो आइए सुनते हैं उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में। हम सब जानते हैं कि बचपन से ही कलाम साहब के मन में उड़ान के प्रति बहुत आकर्षण था।
4: जी हाँ श्रोताओ, और बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि उनका घर समुद्र के किनारे था। बचपन में जब वे समुद्र के ऊपर कलाबाजी खाते हुए उड़ते पक्षियों को देखते थे तो उनका मन भी करता था उड़ने को।
3: जी इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शंस में किया है।
4: श्रोताओ पायलट बनने की परीक्षा में कलाम साहब केवल एक स्थान से चूक गए और नवीं रैंक हासिल की, जबकि उस समय भारतीय वायुसेना में पायलट के केवल 8 पद उपलब्ध थे।
3: अपनी किताब में वो लिखते हैं कि इस घटना से बहुत निराश हुए लेकिन अपने आप को संभाला और उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
4: और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब जानते हैं कि उनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 3 डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं। वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं जिन्होंने हर भारतीय के सपनों को अंतरिक्ष में भेजा। श्रोताओ 71 वर्ष की आयु में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने।
3: एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा

0: बात निकल कर ये सामने आ रही है कि आप अपने जीवन में काम के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखिए।
1: बिल्कुल,
0: जो होगा अच्छा ही होगा। आपका क्या विचार है श्रोताओं, जरूर बताइएगा।
1: तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। प्रश्न है,
0: डॉक्टर कलाम की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डॉक्टर कलाम की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है।
0: 8800440559 है हमारा फोन नंबर।
1: audio@cit.nic.in है हमारी ईमेल का पता। संदेश भेजिएगा जरूर।
0: श्रोताओं भेजिएगा जरूर संदेश, हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। और अब आ गई है बारी कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम
1: पहला कदम
0: और जानते हैं एक अनोखे अभियान के बारे में।
2: साथियों, आज हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत छोटी उम्र में ही दूसरे बच्चों से अलग नजर आते हैं, समस्याग्रस्त नजर आते हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ही एक बच्चा है राजू, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। इस समय वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ है और
3: अरे राजू बेटा, आओ बेटा, आओ, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, राजू के बापू। अजी सुनो तो।
4: क्या हुआ सुनीता, क्या हुआ?
3: देखो तो जरा, आज तो हमारा राजू बेटा बिना किसी सहारे के खुद चलकर दूसरे कमरे से डिब्बा उठाकर लाया है जी।
4: अच्छा सुनीता, ये तो बहुत बड़ी बात है।
3: हाँ जी
4: भाई, ये तो कमाल हो गया। अरे भाई, इस बात को तो फौरन चलकर डॉक्टर साहब को बताना चाहिए। कितनी खुशी होगी उन्हें जानकर।
3: बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर देर किस बात की है, आज तो आपकी छुट्टी भी है ना।
4: हाँ।
3: आज ही स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं जी।
4: हाँ ये ठीक रहेगा।
3: तो फिर चलो, आज तो मेरा राजू बेटा अपने आप तैयार भी होगा, है ना बेटा?
5: हाँ माँ, मैं अपने आप तैयार।
3: चलो बेटा, अब जल्दी से अपनी कमीज के बटन बंद करो, कोशिश करो बेटा।
5: हाँ।
3: चलो।
5: हाँ? हाँ।
3: अरे ये देखो।
5: हाँ।
3: ये बंद हो गया ना, शाबाश।
5: हाँ।
3: मेरा अच्छा बेटा।
5: हाँ।
3: अब बाकी मैं लगा देती हूँ। हाँ? ये लो। आओ बेटा, अब तुम्हारे बाल भी ठीक कर दो।
5: हाँ? हाँ?
3: हाँ? ये हो गई कंगी।
5: हाँ।
3: मेरा राजू बेटा कितना अच्छा लग रहा है।
4: चलो सुनीता, अब डॉक्टर साहब के पास चले।
3: चलो जी चलो।
4: आओ,
3: आओ बेटा आओ, आओ, आओ, आओ।
2: हाँ तो साथियों, राजू के माता पिता उसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। वहां उनकी भेंट शीला जी से हो गई, जिन्हें वे बहुत पहले से जानते थे।
3: अरे चाची आप, नमस्ते।
6: नमस्ते सुनीता।
4: नमस्ते चाची।
6: नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग?
3: ठीक है जी। आप यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है।
6: हाँ, हाँ।
3: वैसे सब ठीक ठाक तो है?
6: हाँ,
3: चाची?
6: हाँ, वैसे तो सब ठीक है। हमने सोचा आज गीता के दादाजी की छुट्टी है तो गीता को पोलियो की दवाई दिलवा दें।
3: ये आपने बहुत अच्छा किया चाची। सही समय पर पोलियो की दवाई बच्चे को दिलवाना बहुत जरूरी है।
6: हाँ।
3: अब देखो ना, हमारे गांव में एक लड़का है। उसके माँ बाप ने लापरवाही कर दी।
6: ओ।
3: उसको समय पर दवाई नहीं दे पाए और वो पोलियो का शिकार हो गया।
6: ओ।
3: चाची अब वो 10 साल का है और चल नहीं पाता।
6: अच्छा।
3: इसकी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाता बेचारा।
6: ओ हो हो हो, ये तो बड़े दुख की बात है
3: जी।
6: लेकिन अब तो सरकार ने बाकायदा

0: पोलियो अभियान चला रखा है जिससे बड़ी आसानी से दवाइयां मिल जाती हैं। भाई ऐसे मौके का तो सभी माँ बाप को लाभ उठाना चाहिए। अच्छा सुनीता
1: जी,
0: ये तो बताओ राजू को क्या तकलीफ है?
1: क्या बताऊं चाची, इसकी समस्या कुछ अलग ही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे मूल रूप से सेरिब्रल पाल्सी यानी दिमागी पक्षाघात है।
0: अच्छा,
1: जिसके कारण ये गत्यात्मक विकलांगता का शिकार हो गया है। राजू के जन्म के समय तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इसने समय पर गर्दन संभालना, बैठना और खड़ा होना शुरू नहीं किया तो चाची हमें चिंता होने लगी।
0: हाँ हाँ।
1: और आसपास के झोला छाप डॉक्टरों की राय लेते रहे।
0: ओहो।
1: हाँ चाची, और नतीजा ये हुआ कि सही समय पर सही इलाज नहीं हो पाने की वजह से इसने देर से चलना शुरू किया। और तो और, अब तक ये दूसरे बच्चों की तरह सामान्य ढंग से बोल भी नहीं पाता चाची।
0: सुनीता, अभी तुमने कुछ कहा था ना, वो गत्यात्मक।
1: जी चाची।
0: हाँ हाँ।
1: गत्यात्मक विकलांगता।
0: हाँ हाँ।
1: डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस विकलांगता में रोगी शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और वो कई प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को दूसरे सामान्य लोगों की तरह सहजता से नहीं कर पाता। जैसे उठना, बैठना, खड़ा होना, गर्दन या हाथ पांव हिलाना वगैरह वगैरह।
0: क्या इसकी वजह से राजू के दिमाग पर भी असर पड़ा है?
1: चाची, शुरू में मुझे भी इस बात का संदेह था। डॉक्टर ने बताया था कई बच्चों के दिमाग पर असर हो सकता है और नहीं भी।
0: ओह।
1: लेकिन जहां तक राजू की बात है, जांच करने पर पता चला कि इसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा है।
0: अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है।
2: पा पा पा पा, डॉक्टर साहब कब आएंगे?
3: अभी आने वाले हैं बेटा। सुनीता, वो देखो डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं।
1: हाँ,
3: नमस्ते
1: डॉक्टर साहब।
4: ओ नमस्ते नमस्ते, आइए आप लोग अंदर आइए।
0: अच्छा सुनीता
1: जी,
0: तुम डॉक्टर साहब से मिल लो, मैं गीता के दादाजी को देखती हूँ, वो भी आ गए होंगे उसे दवाई दिलवा कर।
1: धन्यवाद चाची, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: हाँ, हाँ।
1: फिर भेंट होगी।
0: हाँ जरूर।
1: नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते।
3: नमस्ते चाची।
0: हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते।
3: हाँ सुनीता।
4: आइए आइए बैठिए
3: जी।
4: राजू बेटे, तुम कैसे हो?
2: जी मैं ठीक हूँ।
3: डॉक्टर साहब, हम आपको ये खुशखबरी देने आए थे कि हमारा राजू अब बिना किसी सहारे के ठीक से चलने लगा है।
4: अरे वाह।
3: हाँ।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने
3: जी।
4: शाबाश शाबाश बेटे राजू।
1: डॉक्टर साहब, आज तो ये अपने आप बिना किसी सहारे के चल के दूसरे कमरे से डिब्बा भी उठा कर लाया।
3: हाँ डॉक्टर साहब,
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि राजू की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।
3: जी।
4: शुक्र है इसकी हालत बेहतर हो रही है। अब तो वो सही प्रशिक्षण लेने और आप दोनों की कड़ी मेहनत से चलने फिरने और काम भी करने लगा है।
3: जी।
4: राजू की हालत तो फिर भी बहुत ठीक है, कुछ बच्चों पर तो इसका इतना ज्यादा असर होता है कि उन्हें पहिए वाली कुर्सी, दो डंडों का या वॉकर का सहारा लेना पड़ता है।
3: डॉक्टर साहब, इस विकलांगता में रोगी पर और क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है?
4: देखिए, जैसे कि मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं, इसमें शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ
3: जी
4: कुछ और क्षमताओं पर भी असर हो सकता है, जैसे कि बोलने में, समझने में। कुछ बच्चों के तो देखने, सीखने और उनकी बुद्धि पर भी असर पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हमारा राजू और बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ सकता है, क्योंकि अब इसकी स्कूल जाने की उम्र होने लगी है।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल स्कूल जा सकता है, पढ़ सकता है।
3: अच्छा।
4: क्योंकि इसके दिमाग पर इस बीमारी का कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। पर हाँ, इसको अब ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी जो इसे सही बोलना सिखाएं, इसे अभ्यास कराएं और हाथ पैर की कसरत कराते रहें।
3: डॉक्टर साहब, ये सब सुविधाएं स्कूलों में भी मिलेंगी?
4: बड़े शहरों में तो ये सुविधाएं स्कूलों में भी मिल जाती हैं, पर गांव के स्कूल में अगर ये सुविधा न मिले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा मिल जाती है।
1: जी
4: हाँ, जैसे आपको पहले शारीरिक व्यायाम कराने वाले डॉक्टर यानी फिजियोथेरेपिस्ट ने चलने के अभ्यास का कार्यक्रम बताया था ना,
1: जी,
4: वैसे ही वो अब आगे इसकी शारीरिक दक्षताओं को तेजी से सुधारने के लिए सलाह देगा।
3: अच्छा।
4: और हाँ, इसके अलावा आप किसी वाक विशेषज्ञ यानी स्पीच थेरेपिस्ट से भी मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे कि इसकी बोलने की क्षमता में सुधार करने के लिए आप कैसे इसकी मदद करें।
1: जी डॉक्टर साहब, तो क्या हम इसको स्कूल में दाखिल कर दें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इसे अपने घर के आसपास किसी भी स्कूल में दाखिल कर दीजिए। और हाँ, वहां के अध्यापकों के साथ आप तालमेल अवश्य बनाकर रखें ताकि राजू को स्कूल में कोई परेशानी ना हो।
1: जी
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये दिमागी पक्षाघात होता क्यों है?
4: ओहो, आप फिर परेशान हो गए। मैंने पहले भी बताया था इसके कई कारण हैं, जैसे कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे को तेज बुखार आना,
3: जी,
4: अधिक दस्त या दौरे पड़ना,
3: हाँ,
4: ठीक है ना,
3: हाँ हाँ,
4: बच्चे के सिर में कोई चोट लगना,
3: अच्छा,
4: डॉक्टर की राय के बिना बच्चे को कोई दवाई देना,
1: ओ,
4: और बच्चे को समय पर सारे जरूरी टीके न लगवाना।
3: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना बहुत समय दिया।
1: जी राजू बेटा, बेटा डॉक्टर साहब को नमस्ते करो।
3: करो बेटा नमस्ते। शाबाश शाबाश
4: शाबाश, नमस्ते बेटा, नमस्ते। फिर आकर बताना कि आपने और क्या क्या सीखा।
3: चलो बेटा आओ।
1: अच्छा
3: नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते
4: नमस्ते,
3: आओ बेटा।
5: साथियों, सच्ची लगन और मेहनत से बहुत कुछ हो सकता है। राजू के माता पिता ने यह संकल्प कर लिया है कि राजू के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ेंगे, इसलिए वे नियमित रूप से राजू को विशेषज्ञों के पास ले जाते हैं और अब राजू स्कूल भी जाता है, अपना ढेर सारा काम खुद ही कर लेता है। और हाँ, अब वो पहले की अपेक्षा साफ साफ बोलने भी लगा है। राजू के माता पिता को अब राजू की इस यात्रा में कई कदम चलने के बाद कुछ राहत मिलने लगी है। समय के साथ वो और उनका बच्चा सामान्य जीवन में रमने लगेंगे, ऐसी हमारी आशा है।
6: जी, पहला कदम अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, और अब सुनते हैं कार्यक्रम
7: मुझे गर्व है,
6: और जानते हैं किसे किस बात पर गर्व है और वो क्यों।
8: अरे सौरभ, रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
9: अरे वो देखो, रोहन फिर से आ गया।
10: तुम रोज रोज क्यों आ जाते हो भाई?
9: चल चल के इसे सबक सिखा।
10: रोहन रोहन रोहन रोहन रोहन,
11: क्या कर रहे हो? इसके कपड़े कितने मैले हैं, तुम रोज कपड़े नहीं धोते क्या?
10: और नहाते भी नहीं हो क्या?
9: अरे तुम्हें पता है ये जिस बस्ती में रहता है वहाँ कभी कभी पानी ही आता है और वो भी गंदा।
11: तो नहाना धोना रोज कैसे कर पाता होगा?
7: गंदा पानी? क्या तुम उसी पानी का इस्तेमाल करते हो?
8: छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे तंग क्यों करते रहते हो? मुझमें क्या कमी है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा रोज रोज क्यों करते हो?
7: तुम बस्ती से आते हो और तुम्हारे पापा हमारी गंदगी साफ करते हैं, तो तुम भी गंदे हुए ना।
9: गंदा गंदा गंदा गंदा गंदा।
8: छोड़ो छोड़ो मुझे, ले छोड़ो मेरे बैग को, छोड़ो मेरे बैग को।
12: गुड मॉर्निंग सर।
13: क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ?
11: कुछ नहीं सर, ये लड़का ठोकर खाकर गिर गया था तो हम इसकी मदद करने आए थे।
9: ऐसे ही हुआ था।
13: झूठ बोलते हो, मैंने सब देखा है। तुम सब मिलकर इसे परेशान कर रहे थे। बोलो, जल्दी बोलो।
9: सर, सर सच में हमारी कोई गलती नहीं है, ये खुद हमसे लड़ रहा था।
7: हाँ सर,
9: हाँ सर, लड़ रहा था।
7: हाँ सर, और हम खेल रहे थे तो हमसे उलझने लगा, बोला हमको मारेगा।
9: हाँ सर, ऐसे ही हुआ था।
13: शट अप, अपनी अपनी क्लास में जाओ, चलो।
14: अरे अरे रोहन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास में नहीं जाना क्या?
15: मैडम, मैं क्लास में जाऊंगा तो सब मेरा फिर से मजाक बनाएंगे, मुझसे झगड़ेंगे भी, मैं क्या करूँ?
14: ओहो, चुप हो जाओ पहले तो। अब बताओ कौन तुम्हारा मजाक बनाएगा?
15: क्लास के बच्चे, वो कहते हैं कि मैं गंदा हूँ और मुझ पर से बदबू आती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो वो भी गंदे हो जाएंगे। उन्होंने मेरा खाना भी ये कह के बिखेर दिया कि ये गंदे पानी से बना है।
14: ओहो रोहन बेटे, ये सब कब से चल रहा है? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया?
15: मैडम, जब से मैं स्कूल में आया हूँ तब से सब मुझे परेशान करते हैं। मुझे लगा कि कुछ दिनों में हम सब दोस्त बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे पापा तो सबकी अच्छी सेहत के लिए सफाई का काम करते हैं ना, ये लोग जो गंदगी फैलाते हैं, अगर मेरे पापा वो साफ ना करें तो सब बीमार हो सकते हैं। फिर भी सब मुझे और मेरे परिवार को लेके क्यों बातें बनाते हैं? मुझे यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता।
14: ओ रोहन बेटे, पहले रोना बंद करो। देखो तुम सबसे अच्छे बच्चे हो स्कूल के, हो ना?
15: यस मैम।
14: चल अब मेरे साथ चलो।
15: ओके मैम।
14: मैं इस बारे में सबसे बात करती हूँ आज ही। अब तो खुश हो?
15: यस मैम।
14: हंस के तो दिखाओ। आ जाओ आ जाओ।
16: ये मैम की क्लास है ना?
14: बच्चों,
17: गुड मॉर्निंग मैम।
14: गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो बैठो, सब बैठो। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी लेकर आई हूँ। जानना चाहते हो कौन सी एक्टिविटी?
11: यस मैम।
14: कल हम सब यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। यहाँ पर हर बच्चा आएगा और आकर मेरा परिवार पर अपने विचार रखेगा, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि इसके लिए आपको मार्क्स भी मिलेंगे। बट हाँ, ध्यान रखना, चीटिंग नहीं चलेगी कोई भी। मंजूर?
17: यस मैम।
14: ओके, देन सी यू टुमारो।
17: ओके मैम।
14: तो बच्चों, आज का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम शुरू करें।
17: यस मैम।
14: सबसे पहले बुलाते हैं शानू को। शानू, आप अपने परिवार के बारे में बताइए।
18: मेरे घर में दादा, दादी, पापा, मम्मी, एक भाई और छोटी बहन है। पापा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करते हैं, मम्मी हम सब का ख्याल रखती है।
14: बहुत अच्छे, तालियां। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ सौरभ को।
9: मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती है।
14: तालियां हो जाए सौरभ के लिए भी। और अब बारी है इशिका की।
7: मेरे भैया ने अभी बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया।
14: वाह, आज तो पुलिंदे बन गए हैं। और अब बच्चा कौन सा आएगा जो अपने परिवार के बारे में हमें बताएगा?
11: मैम, मैं बताऊं?
14: हाँ हाँ बताओ।
11: मेरे दादाजी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, हम दो भाई बहन।
14: बहुत अच्छे, गुड। अब बारी है मेघा की।
12: मैम, कई बार मेरे मम्मी पापा हमें पिकनिक पर ले जाते हैं और वहाँ पर
14: सा बच्चा रह गया है। रोहन। तो अब रोहन की बारी है। रोहन आगे आओ।
16: रोहन, रोहन,
14: साइलेंस। मैंने कहा साइलेंस। ये क्या बदतमीजी है बच्चों? रोहन तुम्हारा क्लासमेट है, अब इसकी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई बच्चा बीच में नहीं कुछ बोलेगा, समझे?
19: थैंक यू मैम। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। मेरा परिवार दुनिया के बाकी परिवारों की तरह है। परिवार में पापा, माँ, दीदी और दादाजी हैं। मेरे पापा सफाई का काम करते हैं, जिसके लिए हर रोज मेरी माँ मानसिक तौर से उनके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए खुद को तैयार करती हैं, और ऐसा कुछ ना हो इसके लिए प्रार्थना भी करती हैं।
14: वाह।
19: साथ ही पापा को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार देती हैं, अच्छा खाना देकर और बातचीत के जरिए उन्हें सपोर्ट करती हैं।
14: शाबाश।
19: हम अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, बहुत साफ रखते हैं, लेकिन पापा सुबह घर से निकलते हैं सिर्फ दूसरों की गंदगी साफ करने के लिए, वो गंदगी जिसे लोग अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं, जो हम सबको बीमार करती है। माँ इस बात से हमेशा डरती हैं कि कहीं पापा भी किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाएं।

0: इसलिए मुझे मेरे परिवार पर गर्व है, मुझे अपने पापा पे गर्व है। He is the front warrior. I am proud of him.
1: बहुत अच्छे रोहन, बहुत अच्छे।
2: चुप हो जाओ रोहन, चुप हो जाओ। आज रोहन ने जिंदगी की असली सच्चाई हमारे सामने रखी है ना बच्चा, चुप हो जाओ।
0: सॉरी रोहन, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
3: हाँ, मैंने भी गलत व्यवहार किया, उसके लिए सॉरी रोहन।
4: सॉरी रोहन।
5: रोहन, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अगर तुम्हारे पापा जैसे लोग रोज घर से ना निकले तो हमें बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। सॉरी रोहन।
2: तो देखा बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी न किसी वजह से ही ये अलग अलग काम बने हैं। अगर कोई गंदगी साफ करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखता। रोहन को देखो, उसके इलाके में पानी की कमी है, फिर भी वो साफ सुथरे कपड़े पहनने की कोशिश करता है। साफ सफाई के प्रति कितना जागरूक है ये बच्चा, इसलिए हमें इसकी कोशिशों के लिए इसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर चाहे वो गार्ड हो, चाय वाला हो या रिक्शे वाला। इस समाज में सबकी अपनी अहमियत है बच्चों।
5: हाँ मैम, आज के बाद हम किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे और ना ही किसी को मारेंगे। मतलब कोशिश तो कर ही सकते हैं ना।
6: बिल्कुल ठीक। लो, इसी बात पर घंटी भी बज गई, तो कल मैं आपके लिए एक बढ़िया सी एक्टिविटी और लेकर आऊंगी। मंजूर?
7: यस मैम।
6: बाय
8: बाय मैम।
3: रोहन, क्या अब तुम हमारे दोस्त बनोगे?
8: जरूर, मैं तो शुरुआत से ही तुम सबका दोस्त बनना चाहता था।
4: अरे वाह, मेरी मम्मी

0: सैंडविच रखा है, लो रोहन तुम्हें भी पसंद आएगा।
1: पर मैं,
2: अब तो हम सब दोस्त हैं ना, तो साथ में लंच भी करेंगे। आज तुम हमारा लंच शेयर कर लो, कल हम तुम्हारा लंच शेयर कर लेंगे, ठीक है?
3: बिल्कुल, वैसे भी शेयरिंग इज केयरिंग। हम अपने हीरो का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा?
2: जैसे तुम्हारे पापा हमारा ध्यान रखते हैं, क्यों दोस्तों?
3: बिल्कुल, हमें गर्व है तुम्हारे पापा पर।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुझे गर्व है। हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो इसलिए अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। मिलकर काम करना हमें प्रकृति से सीखना होगा और समझबूझ जीवन को कब एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है ये बताएगी हमारी आज की कड़ी, जिसका शीर्षक है साथी।

0: ये मानव अभी तक नहीं लौटा। लगा होगा अपने दोस्तों के बीच में अपनी शेखी बगा रहा होगा। पता नहीं क्या करता है लड़का।
1: हाँ मम्मी, जब से अपना मानव फुटबॉल का मैच जीता है उसके पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं है। रात दिन कभी फुटबॉल की तरह जमीन पर तो कभी हवा में रहता है।
0: उसमें ये अकड़ तो मैं भी देख रही हूँ। कहाँ हमने ये चाहा था कि वो मिलजुल कर रहना सीखे, और कहाँ वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं।
1: हाँ मम्मी, अब तो वो अपना होमवर्क भी दूसरे बच्चों से करा लेता है। सभी उसे फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी मानने लगे हैं।
2: क्या हुआ भाई, सुबह सुबह माँ बेटी में ये क्या कानाफूसी चल रही है?
0: कुछ भी नहीं, बस थोड़ा मानव की चिंता सता रही है।
2: क्यों?
0: अपने काम दूसरों पर टालने लगा है वो।
1: हाँ पापा, उसके दोस्त भी पता नहीं उसे क्या समझते हैं। हर समय उसके आगे पीछे रहते हैं, हर काम को तैयार।
2: अरे अभी अभी फुटबॉल मैच जिताया है ना मानव ने, इसीलिए सबका हीरो बना हुआ है। धीरे धीरे फिर धरती पर आ जाएगा।
1: पर पापा, वो अपने सारे काम, यहाँ तक कि होमवर्क भी अपने दोस्तों से कराता है।
2: अब चलो, अभी डॉक्टर इस्लाम और उनके मित्र डॉक्टर नरेश सिरोही आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इस्लाम तो बच्चों को समझाने में माहिर हैं।
0: हाँ, ये तो है। कहाँ अपना मानव हमेशा उनकी डांट से डरता था, और अब कहाँ उनकी हर बात सुनने समझने को तैयार रहता है।
1: अरे मम्मी, वो सब तो इसलिए क्योंकि वो इन सब ज्ञान भरी बातों को अपने दोस्तों में सुनाकर डींगे मारता है।
2: ओह, लेकिन सृष्टि बेटा, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, और ये तो अच्छी बात है। परंतु हाँ, अगर घमंड आ जाए तो हर ज्ञान व्यर्थ है।
0: हाँ, यही घमंड तो आ गया है आपके सपूत में।
2: अच्छा,
0: ज्ञान का तो पता नहीं उसे कितना मिला है, पर घमंड कूट कूट के भरा है।
2: अच्छा?
0: अब नहीं कहोगे जैसा पिता वैसा पुत्र।
2: अब हाँ, इस समय क्यों बोलूं मैं? चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे ये विवेक सुबह सुबह कहाँ चला गया, और ये मानव है कहाँ पे?
1: विवेक भैया, वो तो कोई लाइब्रेरी की किताब लौटाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। और मानव मोहल्ले के लड़कों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा है। अब मानव साहब कब आएंगे ये तो मुझे पता नहीं।
0: अरे लगता है विवेक आ गया।
2: हाँ, देखो देखो। हाँ, दादा।
3: अरे इस्लाम भाई साहब।
4: ये हमारे मित्र हैं डॉक्टर नरेश सिरोही।
1: नमस्ते अंकल,
0: आप भी अंदर आइए भाई साहब।
2: बैठो भाई बैठो, आप कैसे हो? बैठो बैठो ना।
0: अरे विवेक भी आ गया।
5: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते नमस्ते। और विवेक, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भाई?
5: लाइब्रेरी गया था कुछ किताबें लौटाने।
4: विवेक, सृष्टि, ये नरेश अंकल हैं।
1: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते नमस्ते।
4: ये महासागर विज्ञानी हैं, पता है समुद्र की चौड़ाई गहराई नापते रहते हैं।
6: उड़ा लीजिए, आप भी मजाक उड़ा लो प्रोफेसर इस्लाम पर, हमारे बगैर काम नहीं चलने वाला।
2: ये बात तो सही है।
0: और ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे बिना भी काम नहीं चलने वाला। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
2: ये अच्छी बात है।
4: विवेक, तुम्हारा छोटा भाई नहीं दिख रहा, क्या अभी तक सो रहा है वो? है
1: कहाँ अंकल, जब से फुटबॉल मैच जीत कर आया है तब से बस दिमाग ही फुटबॉल जैसा बन गया है। सुबह शाम बस फुटबॉल प्रैक्टिस बस।
4: अरे वाह, तो अपना मानव पिंटू की टीम से फुटबॉल मैच जीत गया भाई। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है।
2: हाँ इस्लाम भाई, बढ़िया तो है, पर पता नहीं उसमें इतना घमंड आ गया है कि बस पूछो नहीं। और ऊपर से उसके दोस्त भी उसे इतना भाव देते हैं जैसे कहीं का राष्ट्रपति हो।
5: हाँ पापा, कल मैंने देखा कि जब मानव स्कूल से आ रहा था तो उसका दोस्त हैप्पी है ना, उसका बैग और बोतल पकड़कर पीछे पीछे चल रहा था।
2: हाँ, बात कर।
1: पीछे।
5: और मैंने पूछा तो मानव नहीं हैप्पी कहने लगा कि विवेक भैया रहने दो, मेरी गलती से 2 गोल हुए, अब इतनी सजा तो सहनी पड़ेगी। अब बताओ पापा।
2: वो तो बेचारा हैप्पी की जगह दुखी हो गया होगा।
4: तो मानव जी अब सजा भी देने लग गए। चलिए आने दीजिए, बात करते हैं उनसे।
2: हाँ, सही रहेगा।
1: ओह, लगता है आ गए हमारे मोहल्ले के पेले।
7: ए हैप्पी, चल फुटबॉल अंदर रख। अरे अंकल आप, नमस्ते।
4: नमस्ते मानव भाई, तुम्हें पिंटू की टीम पर मिली जीत मुबारक हो।
7: थैंक यू अंकल। अंकल ये फुटबॉल है ना, ये पिंटू की है जो हमें जीतने पर मिली है।
8: और अंकल अब पिंटू फुटबॉल भी नहीं खेलता, बस चुपचाप बैठकर हमें खेलता देखता रहता है।
4: अच्छा बच्चों, ये नरेश अंकल हैं, ये समुद्र के विशेषज्ञ हैं, इनसे तुम अपने महासागरों सागरों से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हो।
8: अरे वाह अंकल, हमें तो महासागरों पर होमवर्क भी मिला है। मानव, तेरा होमवर्क भी मैं ही कर लूंगा, ठीक है?
7: ओ ठीक है हैप्पी। अंकल, हमें पिछली बार आपने महासागर, भूमि और वायुमंडल का आपसी तालमेल तो बताया था, आज तो आप महासागरों में कैसे गतिविधियां होती हैं ये बताने वाले थे।
4: आज तो यही बताना है, फिर अगली बार वायुमंडल को ले लेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि गायर यानी वृत्ताकार गति क्या होती है?
7: हाँ अंकल, सागरों महासागरों में पानी बड़े बड़े लूप यानी पाश के रूप में प्रवाहित होता है, इन्हें ही गायर कहते हैं।
6: वाह वाह, भाई मानव तो बहुत कुछ जानता है आपका। हा?
8: हाँ अंकल, मानव को बहुत कुछ पता है। हा? ये तो बड़ा होशियार है।
6: अरे भाई वाह मानव।
4: हा? अच्छा मानव, क्या तुम जानते हो इन गायर के घूमने की दिशा उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग में क्या होती है?
7: अंकल ये तो नहीं पता।
8: तेनु नहीं पता?
5: मानव, भूमध्य रेखा से ऊपर यानी उत्तरी भाग में ये गायर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं यानी क्लॉकवाइज, जबकि भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये गायर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। समझे?
1: कुछ समझे मानव?
7: हाँ, पर ऐसा क्यों होता है?
6: अब भाई विवेक को तो काफी जानकारी है। हाँ तो ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। असल में धरती के सतह पर हवाओं की भी एक खास हलचल रहती है। महासागरों का प्रवाह उनकी सतह पर चलने वाली हवाओं के कारण बनता है, जिससे पूरे

0: चक्र और महासागरीय चक्रों में एक अनोखापन आता है और भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के जल का प्रवाह दाईं ओर होता है यानी घड़ी की सुई की दिशा में।
1: दक्षिणी गोलार्ध में धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण महासागरों का प्रवाह बाईं ओर होता है यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। हालांकि गोलार्ध को छोटे से तटीय क्षेत्र में थोड़ा बहुत फर्क मिलता है, परंतु सामान्यतः यही दिशा रहती है।
2: अंकल, जब यही प्रवाह किसी महाद्वीप के तटीय इलाकों से टकराता है तो ये बाउंड्री करंट यानी सीमा रेखा प्रवाह बन जाता है ना?
0: बिल्कुल ठीक विवेक। इसके अलावा अलग अलग महासागरों के जल की भिन्नता से भी महासागरीय फ्रंट बनते हैं। ये रंग में भिन्नता, तापमान व लवणता में फर्क के द्वारा पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा,
0: पूर्वी सीमा पर इन प्रवाहों की गति कम होती है और पश्चिमी सीमा पर ये प्रवाह तेज होते हैं।
1: और ये सब महासागर, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंधों के कारण होता है। ये बाउंड्री प्रवाह भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य प्रकाश,
3: हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं भी जोड़ूं इसमें कुछ?
1: मैं चाह रहा था कि तुम चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे।
3: भाई देखो, उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी दिशा की ओर जाने वाला प्रवाह है, ठंडे प्रदेशों की ओर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण कर देता है। जब उत्तरी गोलार्ध से जो पानी दक्षिण की ओर आता है उसे हम देख सकते हैं कि वो ठंडा पानी है जो भूमध्य रेखा पर दोबारा गर्म होने के लिए आ रहा है, और ये महासागरीय संचरण का एक छोटा जिया नमूना है।
4: यानी ये तो एक तरह से समुद्र मंथन हुआ जिसके कारण ताप का समान वितरण होता रहता है।
2: बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही कुछ वायुमंडल में होता है।
1: और इसी समुद्र और वायुमंडल के मंथन से समुद्र और पृथ्वी पर जीवन लायक तापमान बना रहता है।
3: बिल्कुल सही।
5: और ये तापमान बना रहा है इसलिए चाय लीजिए बिस्किट के साथ।
3: वाह भाई, लाओ, बहुत बढ़िया भाई, भूख भी लग रही थी है ना भाई। लीजिए लीजिए नरेश भाई, आप भी लीजिए। हाँ लो ना भाई।
1: तो मानव, इतनी सारी बातें हो रही हैं, कुछ समझ रहे हो?
6: हाँ अंकल, कुछ कुछ
3: कुछ।
7: ये अंकल, क्या समुद्र में नदियाँ भी होती हैं?
6: अरे समुद्र में नदियाँ? अरे हैप्पी, सारी नदियाँ तो समुद्र में ही गिरती हैं। समुद्र में नदियाँ नहीं होती, पागल।
7: पर मेरे चाचा जी ने बताया था।
6: अरे गलत बता दिया होगा।
1: पर मानव, तुम्हें कैसे पता कि ये गलत है?
6: मतलब
0: ये कि एक तो सारी नदियाँ समुद्र में नहीं खत्म होती और दूसरा समुद्र में भी नदियाँ होती हैं।
6: पर अंकल, नदियाँ तो समुद्र में ही गिरती हैं।
1: हाँ, पर सारी नहीं, कुछ नदियां हैं जो सागरों तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। जैसे उत्तरी अफ्रीका की तासिली पहाड़ियों से बहने वाली नदियां सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी और शुष्क जलवायु में सूख जाती हैं, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती।
4: अंकल, आजकल तो बड़े बांध और सिंचाई नहरों के कारण भी कई बड़ी बड़ी नदियां भी सागर से नहीं मिल पाती है ना?
0: बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पर सब मानव के दखल से ही हो रहा है।
6: क्या हो रहा है मेरे दखल से? मैंने क्या किया? नदियों का सागरों तक पहुंचने से पहले सूखना या इस प्रक्रिया का मेरे पूछने पर विस्तार से समझाना, क्या हो रहा है मेरे दखल देने से?
4: अरे मानव, दोनों हो रहा है। मानव के कारण पर्यावरण का नाश और मानव के ही कारण ज्ञान भरी बातें।
7: अंकल, तो समुद्र के अंदर नदियाँ होती है ना?
1: हाँ हैप्पी बेटे, होती है। अरे बेटे, हम नदियों को भूमि पर बहने वाले पानी का प्रवाह समझते हैं, पर हम जब इन समुद्रों में बहने वाली नदियों की बात कर रहे हैं तो असल में हम इन समुद्रों पर बहने वाली हवाओं के कारण बने प्रवाहों की बात कर रहे होते हैं। असल में बेटे, इन्हीं को तो ओशन करंट यानी महासागरीय प्रवाह कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी के महासागरों सागरों में गतिमान रहते हैं। ये धरती को गर्म और ठंडा करने में मदद करते हैं।
3: और सबसे बड़ी सागर में बहने वाली नदी या प्रवाह कहें तो वो एंटार्क्टिका के आसपास गतिशील वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी पश्चिमी वायु बहाव है। पता है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेज़न नदी से भी 2000 गुना ज्यादा पानी बहता है।
7: ओए मानव, तेरे पापा को तो बहुत पता है। इतनी बड़ी नदी समुद्र में? देखा मानव, मैं ठीक कह रहा था ना?
6: ठीक है। हाँ अंकल, आप कह रहे थे कि महासागरों में गतिविधियां सघनता के कारण होती हैं।
1: हाँ मानव, लेकिन सिर्फ सघनता के कारण ही मूवमेंट नहीं होते। अगर मोटे तौर पर देखें तो महासागरीय जल में होने वाली गतिविधियों के लिए दो मुख्य कारक हैं। पहला, महासागर की सतह पर बहने वाली हवाओं से तालमेल

0: के कारण, और दूसरा महासागर के अंदर ही सघनता में भिन्नता।
1: हाँ, तो बच्चों इन कारकों या कहें ताकतों के परिणाम स्वरूप होने वाली गतिविधियां महासागरों के तल से प्रभावित होकर मुड़ जाती हैं, या फिर धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इनमें घुमाव आ जाता है।
0: अच्छा,
2: और धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण आने वाले इस डिप्लेक्शन यानी दिशा परिवर्तन को कोरियोलिस प्रभाव या बल कहते हैं, और ये नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरियोलिस के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस बल की खोज की थी।
0: अरे वाह सृष्टि बेटा, शाबाश, तुम्हें ये सब कैसे पता चला?
3: मैंने बताया होगा।
2: नहीं पापा, विवेक भैया ने बताया।
3: उसे भी मैंने ही बताया होगा।
0: अरे मानव, जब तुम्हारे पास तुम्हारे विवेक भैया हैं, तो तुम्हें हमारी क्या जरूरत है भाई? शाबाश शाबाश,
4: थैंक यू अंकल। पर ये मानव मेरी अहमियत समझता कहाँ है, आजकल तो बस अपनी ही धुन में खोया रहता है।
5: नहीं नहीं विवेक भैया, मैं आपसे इतने सवाल पूछता तो हूँ।
2: अरे वो तो तब पूछता है जब तुझे विवेक भैया को पटाना होता है।
1: हाँ तो भाई, इस तरह से चार मुख्य बातें हैं जो महासागरीय जल की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं।
4: अच्छा,
1: पहली है हवा द्वारा चालित प्रवाह, जो इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में वायु प्रणाली क्या है। इसमें ईस्टर्ली प्रवाह शामिल है, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है और जो व्यापारिक हवाओं से भी संबंधित है।
5: अंकल, ये ईस्टर्ली और व्यापारिक हवाएं क्या है?
0: बताएंगे मानव, ये भी बताएंगे कि वेस्टर्ली भी क्या है, परंतु ये वायुमंडलीय संचरण के साथ बताएंगे। अभी महासागरों के जल संचरण को थोड़ा समझो, समझे?
1: हाँ मानव, महासागरों की सतह पर चलने वाली हवाओं में थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट यानी सीधी गतिविधि भी होती है, जो करीब 10 मीटर की गहराई तक अपना प्रभाव छोड़ती है, और अपने साथ साथ ये मूवमेंट सतह के ताप और गैसों को इस गहराई यानी 10 मीटर तक अच्छी तरह मिला देता है। इस प्रकार गहराई तक में हवा द्वारा किए जाने वाले संचरण को लैंगम्यूर संचरण कहते हैं।
3: हाँ, अब अलबत्ता महासागरीय जल के प्रवाह का कारण है सघनता में भिन्नता, जो जल के तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे उच्च तापमान और निम्न लवणता, मतलब
2: कम सघनता और निम्न तापमान और अत्यधिक लवणता, मतलब
6: अत्यधिक सघनता।
1: तो अब अगला कारक है महासागरों के तल का आकार, इससे जल की गतिविधि प्रभावित होती है। ये सतही प्रवाह को सीमा रेखा प्रवाह में बांट देता है और साथ ही साथ गहरे पानी के संचरण को भी तय करता है।
0: और चौथा कारक है धरती का उसकी धुरी पर घूमना।
2: हाँ अंकल, ये तो हम बिल्कुल समझ गए हैं।
1: तो अब इसके अलावा और भी कई कारक हैं, पर अभी तुम यही समझो।
0: ठीक कहा नरेश
6: अंकल। मेरे चाचा कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो प्रवाह होता है वो बहुत खतरनाक होता है।
5: अरे जब पानी के अंदर है तो खतरनाक कैसे होगा?
0: अरे चुप मारा, चुप। ठीक कहा हैप्पी बेटे, बहुत बढ़िया। अंडर वाटर करंट,
3: इस्लाम तो इसको डरा देते हो।
0: अरे बात ही ऐसी बोलता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा था, अंडर वाटर करंट यानी अंतरजलीय प्रवाह बहुत खतरनाक होता है, और मैं आप सबको बताऊं कि हर वर्ष इससे कई मौतें होती हैं। सागर की सतह का पानी शांत नजर आता है, परंतु शक्तिशाली अंतरजलीय प्रवाह तैराकों को नीचे खींच लेता है या तट से दूर ले जाता है, जिससे तैराक थककर डूब भी सकते हैं।
4: भाई हैप्पी, तुम तो बड़े होशियार हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने चाचा जी से सवाल भी करते हो। शाबाश,
6: थैंक यू विवेक पाजी।
1: पर मानव, तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं?
5: आया अंकल, बिल्कुल समझ आया।
0: तो मानव, ये पता लगा कि सारे महासागरीय वायुमंडलीय भूमि के चक्र संचरण एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी अपना अपना काम अपने आप और पूरी निष्ठा से करते हैं, समझे?
2: हाँ, अपना काम दूसरों पर नहीं डालते।
1: हाँ, जैसे भूमि से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी महासागरों सागर को नमकीन बनाती है, जिससे महासागरों में सघनता की भिन्नता आती है और संचरण होता है।
4: हाँ, और भूमि के सुपकार पर महासागर फूलते नहीं, बल्कि बारिश की फुहार बनकर भूमि पर बरसते हैं, उसे हरा भरा कर देते हैं।
2: यानी किसी से कुछ छीना नहीं, ना लिया ना दिया, बस अपना अपना फर्ज निभाया, अपने और सबके फायदे के लिए और अस्तित्व के लिए।
6: समझा मानव?
5: हाँ, समझ गया। हैप्पी, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगा, और अगर तुझे कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है?
6: ठीक है मानव, ठीक है।
3: अरे वाह मानव, तो सच में समझ गया। अब खैर चलो भाई, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। अब इस्लाम भाई, डॉक्टर नरेश आप भी आइए ना, खाना खा लेते हैं भाई, बहुत
7: भूख लग रही है। चलो चलो विवेक, सृष्टि चलो हाथ धोकर खाना खाओ।
8: हाँ मम्मी, हाँ मम्मी।
3: अरे मानव कहाँ भागा जा रहा है? मानव, ओ मानव।
5: पापा आप लोग खाना खाइए, मैं पिंटू को उसकी फुटबॉल देकर आता हूँ।
0: क्या बात है, मानवता अभी खत्म नहीं हुई है।
9: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां वो विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं, जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं, और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं, और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं, जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैवमंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: संचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Bingo on Malaysia ka, the end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अपा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना बनाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठुसुम ठुसुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।
1: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना? ये बात है बहुत जरूरी, बुखार में तेरी पड़ेगी।

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से
0: बाय बाय।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
2: नमस्ते दीदी।
1: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है, तो बोले कि लेके चलोगे सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
3: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं तो उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और विभाग हैं जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं, कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग न पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
0: मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी, म्यूजिक लाविटर मेहरबा, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। हे बाबू, हाँ बोल दे।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम

0: में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सही।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
5: गगन कोकरी फतेह।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं। वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं। बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जा करके अपने अभिभावकों को बताते हैं।
1: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था, और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: शिपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।